0: 90.8 FM झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 FM।
1: सन 1884 की बात है। कलकत्ता में उन दिनों चैतन्य लीला नाटक की धूम मची हुई थी। बड़ी संख्या में लोग वो नाटक देखने जा रहे थे और उसकी काफी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ भक्तजन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित इस नाटक को दिखाने के लिए नाट्य गृह में ले गए। विनोदिनी दासी नामक नगर वधु ने चैतन्य लीला में सजीव अभिनय किया। स्वामी रामकृष्ण उसके अभक्तिपूर्ण अभिनय को देखकर अभिभूत हो उठे। उनकी आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। नाटक की समाप्ति के बाद जब विनोदिनी ने दर्शक दीर्घा में स्वामी रामकृष्ण को बैठे देखा तो वो भागी भागी उनके पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके गदगद हो गई। स्वामी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारा अभिनय बहुत प्रभावी है, जीवन उसी के अनुरूप ढालो तो कल्याण हो जाएगा। विनोदिनी दासी एक महान सिद्ध संत के आशीर्वाद स्पर्श से सुदबुद्ध खो बैठी। उसका जीवन बदल गया। जीवन पर्यंत वो भक्ति और साधना में लगी रही।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं हर रोज गुनाह करता हूँ, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, तू रहमत से मशहूर है।

इंग्लैंड का पादरी जोसेफ करुणा के आध्यात्मिक शक्ति में अटूट विश्वास रखता था। दीन हीन और बेसहारा लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक बहुत ही कुख्यात अपराधी पुलिस की निगाहों से बचता हुआ पादरी के घर पहुंच गया। पादरी ने उसे शरण दी, भोजन कराया और रात को आराम करने की भी स्वीकृति दी। अपराधी ने देखा कि पादरी की मेज पर चांदी के दो दीपदान रखे हुए हैं। पादरी सो गया तो उसने दीपदान उठाकर जेब में रखे और वहां से भाग निकला। वो कुछ ही दूर जा पाया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस को बता दिया कि वो दीपदान उसने पादरी के घर से चुराए हैं। पुलिस उसे पादरी के पास लेकर आई। पादरी को दीपदानों की चोरी का पता लग गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये दीपदान तो मैंने अपनी इच्छा से इसको दिए थे। पादरी के शब्द सुनकर चोर पानी पानी हो गया। उसने उसी समय प्रभु में अपना दिल लगाने का निश्चय किया और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प लिया। अब वो पादरी जोसेफ के शिष्य के रूप में दीन हीनों की सेवा का कार्य करने लगा।

कन्नौज राज की एक विधवा ब्राह्मणी बहुत ही गरीबी के बावजूद अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। वो रोज चरखे पर सूत कातकर अपना और पुत्रों का जीवन यापन करती थी। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उसने। कन्नौज के एक धार्मिक सेठ ने ब्राह्मणी की गरीबी में दिन गुजारने की बात सुनी तो वो उसके पास गए। बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ आर्थिक मदद करके अपने को धन्य कर सकता हूं? ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास तो 5 अमूल्य रत्न है। आपकी सहानुभूति के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। सेठ जी ने कहा, मुझे अपने अमूल्य रत्न तो दिखाइए। कुछ ही देर बाद उसके 5 बेटे गुरुजी के आश्रम से वापस लौटे। आते ही उन्होंने मां के चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद सामने बैठे हुए सेठ जी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ब्राह्मणी ने संस्कृत में कहा, पश्यमय पंच रत्नानी, और सेठ उन 5 रत्नों को देखकर कह उठे, वास्तव में माताजी, आपके इन अनूठे मातृभक्त संस्कारी 5 रत्नों के होते हुए आपको दरिद्र समझना मेरी भारी भूल थी। जिसकी संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और योग्य हो, उससे बड़ा धनवान कौन होगा।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहां बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो।

दोस्तों प्रार्थना करो न केवल इसलिए कि आपको कुछ जरूरत है, पर इसलिए कि आप शुक्रगुजार हैं जो कुछ भी आपके पास है। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूं।

एक बार कुछ शिक्षक आचार्य महाप्रज्ञ के सत्संग में पहुंचे। महाविद्यालय के एक प्राचार्य ने कहा, आचार्य जी, अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी अवमूल्यन होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज तो बिजनेस बनते जा रहे हैं, आपकी नजर में इस पतन के क्या कारण हो सकते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, ज्ञान का तो सार है आचार। दूध में मक्खन ना निकले तो दूध को सारोहीन मानना पड़ेगा। अगर दूध से मक्खन ना निकले तो दूध बेकार है। नैतिकता पर ध्यान नहीं देने के कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट दिखाई दे रही है। जब से शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना और नौकरी करने के लिए सीमित हो गया है, तब से यही गड़बड़ी शुरू हो गई। गुरुदेव आचार्य तुलसी ने भी कहा है, शिक्षा केंद्रों से ऐसे छात्र निकलने चाहिए जिनका आदर्श जीवन हो और वो जिस क्षेत्र में जाएं वहां नैतिकता का आदर्श स्थापित करें। लेकिन आज तो डिग्री पाने के लिए और फिर उसके बाद धन कमाने की होड़ चल पड़ी है। कोरे बौद्धिक विकास से न तो राष्ट्र का भला होगा न ही समाज का। बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी जरूरी है। जब तक नैतिक मूल्य सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे उद्देश्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप कुछ भी कर लें।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ।

दोस्तों, भक्ति में दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक म्यूजियम से शुरू हुई कहानी, क्यूरियोसिटी की पावर। दोस्तों, कभी आप किसी ऐसे म्यूजियम गए हैं और वहां किसी एक छोटी सी लाइन ने आपको कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस किया है जिसने आपकी सोच बदल दी हो? कभी एक छोटी सी कहानी ने आपको रोक कर सोचने पर मजबूर किया हो? आज मैं आपको एक ऐसे स्टोरी टेलर के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी का डायरेक्शन एक म्यूजियम में पड़े हुए एक सच से बदल दिया। नाम है अरविंद विजय मोहन। उनकी कहानी सिंपल सी लगती है, लेकिन मैसेज बहुत गहरा है। एक वक्त था जब उनका इंस्टाग्राम भी बाकी लोगों की तरह था, ट्रैवल के फोटोज, लग्जरी प्लेसेस, खूबसूरत विजुअल्स, सब कुछ अच्छा था पर मीनिंगफुल नहीं। फिर एक दिन वो जर्मनी के एक म्यूजियम में गए, मर्सिडीज म्यूजियम। वहां उन्होंने पढ़ा मर्सिडीज नाम एक्चुअली एक छोटी सी लड़की का नाम था। एक फादर ने अपनी बेटी के नाम पर कार का नाम रखा था। एक बिजनेस डिसीजन के पीछे एक इमोशनल कहानी थी, और बस यहीं से उनकी सोच बदल गई, पूरा यू टर्न ले लिया समझो। उन्होंने महसूस किया हर चीज के पीछे कहानी जरूर होती है। हर ब्रांड, हर बिल्डिंग, हर इन्वेंशन किसी इंसान की एक कहानी ही तो है। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है उनकी क्यूरियोसिटी की जर्नी। उन्होंने डिसाइड किया कि इंस्टाग्राम पर सिर्फ फोटोज नहीं डालेंगे, कहानियां बताएंगे। और आज उनका कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो इंसाइट होता है, मीनिंग होता है। वो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ब्रांड्स को ह्यूमन बना देते हैं, और फैक्ट्स को इमोशनल बना देते हैं। और सबसे खास बात, वो हर कहानी के बाद एक सवाल छोड़ देते हैं, हम अपनी कहानी कैसे बता रहे हैं, सोच कर देखिए। क्योंकि सच ये है, हर इंसान एक ब्रांड ही तो है, हर इंसान की एक स्टोरी है। पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस स्टोरी को समझते हैं और कुछ नहीं। अरविंद कहते हैं स्टोरी सिर्फ बताने के लिए नहीं होती, स्टोरी डायरेक्शन देती है। अगर आप अपने पास्ट को समझ लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। सोचिए, अगर मर्सिडीज सिर्फ एक कार होती बिना किसी कहानी के, क्या वो इतनी आइकॉनिक होती? अगर कोई लीडर सिर्फ डेजिग्नेशन होता बिना स्ट्रगल की कहानी के, क्या लोग उसे कनेक्ट करते? नहीं। हम फैक्ट से इंप्रेस नहीं होते, पर कहानी से कनेक्ट जरूर होते हैं। और यही यही अरविंद का कोर मैसेज है। क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, सवाल पूछते रहो, सरफेस के थोड़ा नीचे देखो। और इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है, और उनका इंस्टाग्राम एक रिमाइंडर है कि दुनिया बोरिंग नहीं है। हमारी नजर बोरिंग हो जाती है, जब हम देखना सीख लेते हैं तो हर चीज में कहानी मिल ही जाती है। एक बिल्डिंग, एक नाम, एक पुराना सा बोर्ड, सब में हिस्ट्री छुपी हुई है। और शायद इसीलिए
उनके फॉलोअर्स सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करते, वो सोचने लगते हैं। दोस्तों, आज का सवाल मेरा आपसे है, आपकी कहानी क्या है? आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आज कोई आपकी बायोग्राफी लिखे तो उसमें सिर्फ डेजिग्नेशन होगा या कोई जर्नी भी होगी, कोई किस्सा भी होगा? क्यूरियोसिटी सिर्फ नॉलेज नहीं देती, क्लैरिटी देती है, और जब क्लैरिटी आती है तो इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। याद रखिए, जिंदगी में सिर्फ जीना नहीं, ऑब्जर्व करना सीखिए, क्योंकि कहानियां हर जगह हैं, बस देखने वाली नजर चाहिए। देख के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कहानी खरीदता है। इसलिए 20 रुपए की कॉफी घर पर नहीं पीता, 200 रुपए देकर कैफे में बोलता है। यहाँ वाइब अलग है भाई।

नरेटिव का जाल, मीडिया सच नहीं सच का फ्रेम दिखाता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है सच क्या होता है? और जो हम कहते हैं वो सच होता है या सच का सिर्फ एक हिस्सा होता है? मीडिया हमेशा झूठ नहीं बोलता, लेकिन मीडिया सच को कैसे दिखाता है वही असली खेल है। इसको कहते हैं फ्रेमिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हेडलाइन आए, प्रोटेस्टर्स ने सिटी को ब्लॉक किया, और दूसरी आए, सिटीजंस ने जस्टिस डिमांड की। इवेंट सेम है, लोग सेम है, रोड वही है, बस शायद शब्द बदल गए, फ्रेम बदल गया, और आपका रिएक्शन भी आई एम श्योर बदल गया। यही कल्चरल मैनिपुलेशन का पहला बीज है, सच को छुपाना नहीं, सच को एंगल देना। एजेंडा सेटिंग, जो दिख रहा है वही इंपॉर्टेंट है। 1970 में कम्युनिकेशन रिसर्चर्स ने एक थ्योरी दी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। मीडिया लोगों को यह बताता है कि सोचना है, मीडिया लोगों को यह बताता है कि किस बारे में सोचना है। और अगर 10 दिन तक टीवी पर सिर्फ क्राइम दिखाया जाए तो लोग कहेंगे देश अनसेफ है, चाहे क्राइम रेट स्टैटिस्टिकली कम हो रहा हो। अगर 15 दिन तक इकोनॉमी की ग्रोथ हेडलाइन बने, लोग कहेंगे देश तो प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे उनके घर का बजट टाइट ही क्यों ना हो। हम अपनी रियलिटी एक्सपीरियंस से कम मीडिया के रिपीटेशन से ज्यादा बनाते हैं। अब थोड़ा सिनेमा की बात करते हैं। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, सिनेमा कलेक्टिव इमेजिनेशन को डिजाइन करता है। हॉलीवुड ने 1940s एंड 50s में अमेरिकन सोल्जर को हीरो बनाकर वॉर को मॉरल ड्यूटी के रूप में प्रेजेंट किया। कोल्ड वॉर के दौरान विलेन का एक्सेंट अलग होता है, कलर ग्रेडिंग डार्क होती है, म्यूजिक टेंस होता है, आपका दिमाग स्लोली डिसाइड करता है कि ये लोग थ्रेट हैं। आपने कभी कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया, फ्रेम ने आपके लिए जरूर डिसाइड किया। इंडिया में भी 70s 80s के दौरान एंग्री यंग मैन का राइज हुआ। सिस्टम करप्ट है, हीरो सिस्टम से लड़ता है, ऑडियंस क्लैप करती है। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी, ये पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का सिनेमैटिक आउटलेट था। सिनेमा इमोशन को आइडियोलॉजी में बदलने का सबसे सटल तरीका होता है। सबसे साइलेंट वेपन रिपीटेशन। मैन्युपुलेशन लाउड नहीं होती,

वो रिपीट होती है। एक इमेज को 50 बार देखिए, वो नॉर्मल लगने लगेगी। एक स्टीरियोटाइप को बार बार सुन लीजिए, वो जोक बन जाएगा, फिर ट्रूथ बन जाएगा। सच और कहानी का सच डिफरेंस ही नहीं रहता है। 1990 के एड्स याद कीजिए, फेयरनेस क्रीम इक्वल्स टू सक्सेस। शादी के रिश्तों में गोरी प्रेफरेंस, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग थी। और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्शन एस्पिरेशन बन गया। कल्चर को चेंज करने के लिए लॉज नहीं, विजुअल्स रिपीट किए गए। और अब आते हैं हमारा सबसे फेवरेट और सबसे नया एजेंडा, सोशल मीडिया एल्गोरिथम मैनिपुलेशन। अब आज मीडिया सिर्फ टीवी स्टूडियो में तो नहीं है, वो आपके हाथ में है हर समय। लेकिन यहाँ एक नया प्लेयर है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि आप क्या देखेंगे। अगर आप एक पॉलिटिकल व्यू देखेंगे, आपको 20 और मिलेंगे। अगर आप एक आउटरेज क्लिप देखेंगे, आपको एक्सट्रीम वर्जन्स मिलेंगे। इसको कहते हैं एको चेंबर। आपको लगता है दुनिया आप जैसे सोच रही है, असल में एल्गोरिथम आपको फिल्टर बबल में रख के दुनिया दिखा रही है। आपको लगता है आप इन्फॉर्म्ड हैं, असल में आप एक क्यूरेटेड रियलिटी में जी रहे हैं। मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट एक पॉलिटिकल थिंकर ने टर्म दिया था, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। इसका मतलब पब्लिक को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जाता, कभी नहीं। पब्लिक को स्लोली कन्विंस किया जाता है कि जो हो रहा है वही सही है। रिपीटेटेड एक्सपर्ट पैनल्स, रिपीटेटेड ग्राफिक्स, रिपीटेटेड नरेटिव्स, कहानियां, किस्से, लोग रेजिस्ट नहीं करते, लोग अग्री करने लगते हैं। कल्चर को फोर्स से नहीं, फ्लो से बदला जाता है। विलेन बनाना, हीरो बनाना, मीडिया किसी को भी विलेन बना सकती है, किसी को भी हीरो बना सकती है, वो भी रातों रात। क्लोजअप शॉट्स, सीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक, सिलेक्टिव फुटेज और हीरो, सॉफ्ट लाइटिंग, बैकग्राउंड में अपलिफ्टिंग स्कोर, पॉजिटिव कमेंट्री। ह्यूमन ब्रेन स्टोरी टेलिंग का अडिक्ट है, हम फैक्ट्स नहीं स्टोरीज कंज्यूम करते हैं। और जो स्टोरी कंट्रोल करता है वो परसेप्शन कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा सवाल, तो क्या मीडिया हमेशा गलत है? नहीं, मीडिया पावरफुल है, ताकतवर है, और पावर न्यूट्रल होती है। उसे कैसे हो वो मैटर नहीं करता। प्रॉब्लम तब होती है जब व्यूअर क्रिटिकल नहीं होता, सवाल नहीं पूछता, अपनी सोच नहीं इस्तेमाल करता। जब हम हेडलाइन शेयर कर देते हैं बिना सोर्स तक चेक करे, जब हम वायरल क्लिप पर रिएक्शन दे देते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट देखे। कल्चरल मैनिपुलेशन तब सक्सेसफुल होता है जब ऑडियंस पैसिव हो। दोस्तों, सच को झूठ बनाना मुश्किल है, लेकिन सच को फ्रेम करके आधा सच बनाना आसान है। आज जब आप न्यूज देखें, फिल्म देखें या इंस्टाग्राम की रील देखें, एक सवाल जरूर पूछेगा, मुझे क्या दिखाया जा रहा है और क्या नहीं दिखाया जा रहा। क्योंकि नरेटिव का जाल तब टूटता है जब देखने वाला जागता है। जाग कर देखिए,

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: जब प्रोडक्ट गलती से फ्लोट करने लगे, कोई और कंपनी पैनिक करती, जीनियस ब्रांड बोल उठे, देखिए ये पानी पर तैरता है। लेसन, बिजनेस में मिस्टेक भी फीचर बन सकती है।

बोरोलिन, एक हरी डिब्बी, एक देसी दास्तां। दोस्तों, आज मैं आपको किसी ग्लैमरस कॉस्मेटिक ब्रांड की कहानी नहीं सुनाने वाली, ना कोई फिल्मी इंडोर्समेंट, ना कोई फ्लैशी एड कैंपेन। आज की कहानी एक छोटी सी हरी टिन की डिब्बी की है, जो शायद आपके घर में जरूर होगी, और अगर नहीं है तो कभी ना कभी तो जरूर रही होगी। नाम है बोरोलिन। हाँ, वही बोरोलिन जिसकी खुशबू आते ही बचपन की याद आज भी ताजा हो जाती है। शुरुआत 1930 में अंग्रेजों का दौर था। साल 1930, इंडिया अभी आजाद नहीं हुआ था। बाजार में ज्यादातर फॉरेन प्रोडक्ट्स ही मिलते थे। देसी चीजें बनाना एक हिम्मत का काम था। तब कोलकाता की एक व्यक्ति गौर मोहन दत्ता, इन्होंने डिसाइड किया कि एक इंडियन एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई जाए। उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की जीडी फार्मास्यूटिकल्स, और वहां से पैदा हुई बोरोलिन। नाम भी इंटरेस्टिंग है, बोरो आया बोरो एसिड से, जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। ओलिन आया लिनोनिन से, जो स्किन को नरम बनाता है। मतलब नाम के अंदर ही फॉर्मूला छिपा है भाई। सिर्फ क्रीम नहीं, स्वदेशी सोच। उस टाइम बोरोलिन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं थी, वो एक मैसेज थी, अपना बनाओ अपना लगाओ। फॉरेन क्रीम्स के सामने एक देसी जवाब, सिंपल ग्रीन डिब्बी, सीधा सा डिजाइन, कोई एक्स्ट्रा शोशा नहीं। और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने लोगों का दिल जीत लिया सालों तक, शतकों तक। वो पहचान वाली खुशबू, आपने नोटिस किया है, बोरोलिन की एक खास स्मेल होती है, थोड़ी मेडिसिनल, थोड़ी कंफर्टिंग। कई ब्रांड्स टाइम के साथ फ्रेग्रेंस चेंज कर देते हैं, पर बोरोलिन ने अपनी ओरिजिनल खुशबू ऑलमोस्ट वही रखी है, क्योंकि वो समझ गए थे प्रोडक्ट सिर्फ स्किन पर नहीं लगता, यादों पर भी लगता है। दादी की संदूक में, माँ के पर्स में, स्कूल के बाद घुटने की चोट पर, हर जगह एक ही क्रीम, बोरोलिन। बिना शोर के पॉपुलर हुई बोरोलिन। आज के जमाने में ब्रांड बनाने के लिए सोशल मीडिया, रील्स, इन्फ्लुएंसर्स, एड्स, सब कुछ चाहिए। पर बोरोलिन का असली एडवर्टाइजमेंट क्या था आप जानते हैं? लोग, एक घर से दूसरे घर तक, एक माँ से दूसरी माँ तक, वर्ड ऑफ माउथ। जब प्रोडक्ट सच में काम करता है तो लोग खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। मुश्किल दौर में भी साथ दिया। 1947 का पार्टीशन बिजनेस के लिए टफ टाइम था, पर बोरोलिन का प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को उसकी जरूरत थी। छोटी सी कट, फटी हुई स्किन, सर्दी में फटी हुई एड़ियां, बोरोलिन हर घर का एक परमानेंट मेंबर बन चुकी थी। पैकेजिंग जो बदली नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मार्केट में इतने सारे नए एंटीसेप्टिक क्रीम्स आए, मॉडर्न ट्यूब्स, ग्लॉसी पैक्स, स्टाइलिश ब्रांडिंग, लेकिन बोरोलिन आज भी अपनी हरी टिन में ही मिलती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी चेंज करना ग्रोथ नहीं होता, कभी कभी कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। वो टिन सिर्फ कंटेनर नहीं है, वो आइडेंटिटी है। सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे घर में एंटीसेप्टिक क्रीम है, अक्सर जवाब होता है हाँ बोरोलिन है। ये होता है ब्रांड रिकॉल, जब प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम ही ब्रांड बन जाए। बंगाल में तो बोरोलिन लोग घर का हिस्सा मानते हैं, शादी के सामान में, ट्रैवल बैग में, विंटर के टाइम बेडसाइड टेबल पर, सभी जगह जानी जाती है। 100 साल का सफर, लगभग एक सदी होने को आई है। ना अग्रेसिव मार्केटिंग, ना कोई सेलिब्रिटी फेस, सिर्फ एक चीज, भरोसा। और शायद इसीलिए बोरोलिन एक एग्जाम्पल है कि ब्रांड लाउड होने से नहीं, रिलायबल होने से बनता है।
दोस्तों कभी कभी सबसे सिंपल चीजें सबसे ज्यादा टिकती हैं। हरी भरी डिब्बी, एक सिंपल फॉर्मूला और एक देश की यादें। बोरोलिन सिर्फ क्रीम नहीं, वो कंटिन्यूटी है, वो रिमाइंडर है कि असली वैल्यू पैकेजिंग से नहीं क्वालिटी से आती है। तो अगली बार जब आप बोरोलिन लगाएंगे, सिर्फ स्किन हील नहीं होगी, शायद थोड़ी सी मेमोरी भी रिफ्रेश हो जाए। लगा के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: नए ब्रांड्स, पैकेजिंग ग्लॉसी, एड फ्लैशी, इन्फ्लुएंसर रेडी। पुराने ब्रांड्स, हम 80 साल से खड़े हैं, तुम इंस्टाग्राम संभालो, हम भरोसा संभालते हैं। What?

आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों, हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं नहीं।

0: तो दोस्तों, प्रेरणादायक गीतों के साथ प्रेरणादायक बातों के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। भूलिएगा नहीं, सपने देखते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: लुई पास्चर। आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पास्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: De Marseille, dans le sud de la France.
5: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जा

0: करते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
1: चलो चलो चलो चलो चलो चलो
2: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
3: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
3: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
3: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
3: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
4: लुई पाश्चर
5: सर,
4: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
5: कहिए सर।
4: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
5: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
4: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
3: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
3: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
3: सन 1874 में लिस्टर ने पास्टर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पास्टर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
3: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
3: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
3: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
6: अरे आजा आजा आजा आज, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ।
5: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
7: सर सर ये टेलीग्राम।
5: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
7: क्या हुआ सर?
5: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
7: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
7: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
8: सर सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
5: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
8: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
5: आप
8: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
5: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
8: मेरा
5: अच्छा,
8: बेटा।
5: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने

0: जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वाज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: विज्ञान गीत।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

आदत है अधूरी की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई।

बालक मुरलीधर का ध्यान बचपन से ही निर्धन और असहाय लोगों के कष्टों की ओर जाता। जब कभी वो अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठ अपनी जमीन जायदाद को देखने निकलता, उसका ध्यान निर्धन मजदूरों और कामगारों की ओर खींचता। उनकी आर्थिक कठिनाइयों तथा शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उसका दिल भर आता। छुआछूत के प्रति उसके मन में बहुत घृणा थी। किसी तरह भी उसका बाल हृदय ये मानने को तैयार नहीं था कि जन्म के कारण ही समाज में कुछ लोग छोटे और कुछ बड़े हो सकते हैं।

उसके स्वभाव की दूसरी विशेषता थी प्रकृति से प्यार। पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों तथा पशु पक्षियों के प्रति उसके हृदय में अगाध प्यार था। वो दिन भर जंगलों में भील गोंडों से परिचय करता और उनसे बातचीत कर प्रसन्न होता। उनका सरल स्वभाव, सच्चाई, निशानेबाजी तथा स्वतंत्र जीवन मुरलीधर को विशेष रूप से आकृष्ट करता। युवावस्था में मुरलीधर पर महात्मा गांधी का बहुत प्रभाव पड़ा। मुरलीधर हर समय सेवा कार्य के लिए तत्पर रहते। स्वतंत्रता संग्राम में वे दो बार जेल भी गए। वे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू ने उन्हें अभय साधक कहकर पुकारा था। उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ समय वकालत भी की, परंतु उनका मन केवल आजीविका कमाने में नहीं लगा। उन्होंने सोच लिया कि उनका जीवन किसी बड़े कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यह कार्य था गरीब दुखियों की सेवा। उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले मां उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को यह भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे इन
पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब हैं बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है। बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है। दूध, घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंद वन सचमुच आनंद का वन है।

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधों की खोज में लग गए और अंत में आनंदवन में वो पौधा लग गया

वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरे

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: रेलगाड़ी
2: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे। तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे संजू, वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
5: अरे हाँ, गाड़ी रुको गाड़ी रुको।
4: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
5: हाँ, अब बन गई रेल।
3: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
4: अरे अरे, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
5: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
6: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं, तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
5: हाँ दादाजी, ये ठीक रहेगा।
6: चलो
3: रेल चली भाई रेल चली, एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ।
6: इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, चुक चुक करती रेल चली, चुक चुक करती रेल चली। अरे अरे भाई, मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
4: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
6: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
4: अच्छा
6: अच्छा, अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
5: दादाजी मैंने देखी है।
6: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
5: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था, तभी देखी है बस।
6: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
4: अरे वाह,
6: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
4: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे। चलो चलो जल्दी चले। हाँ
6: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
7: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
6: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देख आएंगे।
7: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में चढ़ जाओ।
6: बैठो जल्दी करो, जल्दी करो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
5: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
6: हाँ हाँ उतरो बेटी।
2: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
4: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
6: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और कुछ जाने वाले हैं।
4: अच्छा, तो ये बात है।
6: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
8: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
5: दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
6: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
4: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
6: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
4: अच्छा, अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
6: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
4: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
8: चुक चुक चुक चुक चुक।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और सुना है कार्यक्रम खेती बाड़ी।
1: जी हां साथियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे किसान साथियों के लिए हम बहुत ही लाभदायक जानकारी लेकर आते हैं कि हमारे किसान साथी कैसे खेती कर सकते हैं और कैसे खेती करके अपना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में ये भी बताते हैं कि इस मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि धूप आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी जब भी खेतों में जाते हैं तो अपने सर को ढककर रखें, तौलिए से, गमछे से या फिर किसी

0: चीज से, या टोपी भी आप लगा सकते हैं। खेतों में काम करते वक्त साथियों हमें ध्यान देना है कि पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है, अपने शरीर को पानी बार बार दें यानी कि पीते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा, तभी हम खेती का काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोताओं हम बात करने वाले हैं कि टिकाऊ खेती।
1: बिल्कुल श्रोता साथियों, कि टिकाऊ खेती आखिरकार है क्या, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि टिकाऊ खेती किसे कहते हैं, टिकाऊ खेती में किस तरीके से नए पद्धति से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना नई पद्धति का आ गया है कि कैसे किसान साथी नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर हमारे किसान साथी आगे बढ़ सकें, उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को नई नई पद्धति के बारे में खास तौर पर बता रहे हैं, और कुछ ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना होगा किसान साथियों को, क्योंकि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। पानी की किल्लत को देखते हुए हमारे किसान साथी कम पानी वाली फसलों पर जा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब उसके लिए बीजों का चयन होता है, तो बीजों के चयन के लिए हमारे किसान साथी केवीके में जाकर या कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के माध्यम से जो हम कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं वो हमारे किसान साथियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण बातचीत हम लेकर आते हैं। और जैसा कि टिकाऊ खेती की अगर बात करें तो अभी हमारे किसान साथी, चूंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, तो उनको यदि पथरीला इलाका है तो छोटी छोटी जमीन भी हमारे किसान साथियों के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, पॉली हाउस एक माध्यम हो सकता है, ग्रीन हाउस जिसे कहा जाता है, उसमें नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, पौधे भी उसमें लगा सकते हैं, उसमें भी खेती कर सकते हैं। तो किस तरीके से खेती करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर आज हम एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। साथ साथ में कुछ किसान अपने जो सफल हुए हैं और वो अपने अनुभव साझा करेंगे, तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसानों के पास हमारे श्रोता साथियों को ले चलते हैं, उनके अनुभवों को हम जानते हैं, वो नई पद्धति से किस तरीके से खेती करते हैं, क्या अनुभव उनका रहा है। तो आइए हम अपने किसान साथियों की आवाज में इस उनकी कहानी को हम सुनते हैं।
2: मैं विवेक यादव, मैं एक मध्यवर्गीय सुभाष नगर किसान हूँ। भैया, अगर हम अपनी नई तकनीकों को आज हम अपने खेतों में लगाते हैं तो भैया लागत आती है, पर यह लागत एक बार की है जिससे हम भविष्य में काफी समय तक इससे लाभ ले सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया लगाओ एक बार और काटो बार बार।
3: मैं सुंदरदास, जगदीशपुर का किसान। हमारे ख्याल से आज स्थिति को देखते हुए नई तकनीकों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग पिछड़ जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, नई तकनीकों को अपनाना थोड़ा महंगा जरूर है।
4: मैं जवाहर नगर का एक छोटा सा किसान हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। भैया, यह बात तो सही है कि खेती में अगर हम वैज्ञानिक तकनीक लगाएं तो इससे थोड़ा खर्चा तो आता है, पर इससे आने वाले समय में बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले पंप सेट लगाया था और मैं अभी तक उससे सिंचाई कर रहा हूँ।
5: किसान भाइयों की बात को ध्यान से सुनते हुए मुझे एक धारणा का पता चला भाइयों, कि हमारे सभी किसान भाई सोचते हैं कि भाई अगर हम उन्नतशील खेती करना चाह रहे हैं और नई नई जो तकनीकें हमें जो विशेषज्ञ बताते हैं उनको अपनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए निवेश करना बड़ा जरूरी है, और निवेश भी मामूली नहीं, बड़ा निवेश है किसान भाइयों। तो इस निवेश को किसान कैसे देखे, क्या खर्चा है उसके लिए या कि एक कमाई का नया साधन, और इसी बात से एक विषय जो सामने आया है कि निवेश एक बार लाभ बार बार, यानी एक बार निवेश करने के बाद आप लाभ बार बार कैसे लें, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों की धारणा को और मजबूती से समझते हैं और चलते हैं बातों बातों में, जो कि है एक लघु नाटिका।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
7: आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।

0: दिया कि जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: हाँ दिशान मिया पकड़ो उधर से पकड़ो चलो। हाँ नहीं रुको रुको रुको रुको रुको तुम रुको रुको मैं पहले उतरता हूँ। हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक
2: आराम से आराम से।
3: अरे घर में शादी है क्या? राम राम
1: राम राम तुम हटो यार जरा
2: एक दिशान मिया। हाँ का कह रहे हो कल्लू भैया?
3: घर मैंने कहा घर में किसी की शादी है क्या भैया?
1: शादी से तुम्हारा मतलब?
3: अरे इतना सारा सामान लेकर आए हो शादी का ही लग रहा है।
2: शादी का? अरे कल्लू ये जो पाइप है ये सामियाना का पाइप थोड़े ना है। ऊपर से ये बताओ जो सामियाना कहीं पन्नी का लगता है क्या है?
3: ये तो बात सही कह रहे हो भैया लेकिन है क्या ये बवाल?
1: अरे भाई कल्लू कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या हम लोग अच्छी खेती चाहते हैं इसके लिए पाली हाउस लगा रहे हैं।
2: हाँ और तुम्हें पिछली बार की बात याद है? संगम भैया कह रहे थे कि हम लोगों को टिकाऊ खेती करनी चाहिए और टिकाऊ खेती के लिए अगर हम पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
3: इसके लिए पैसा तो बहुत खर्च किया दिलशान भैया।
1: हाँ थोड़ा सा खर्चा हुआ है लेकिन अब भाई वो सब बराबर हो जाएगा क्यों दिलशान भाई?
2: बिल्कुल भाई, आज हम पैसा लगा रहे हैं कल पैसा फिर आएगा और परसों फिर आएगा।
3: इससे अच्छा तो आप अपने पान की दुकान खोल लेते, उससे तो रोज रोज आमदनी आती।
1: तुम भी यार कल्लू हद है।
2: भैया हम लोग हैं किसान, हम लोग खेती करेंगे तभी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। पान और बीड़ी सुरती बेच के कुछ नहीं होने का है।
1: और वैसे भी कल्लू छोटा बिजनेस नहीं बड़ा बिजनेस करो
2: और आज की नहीं आगे की सोचो
4: भाई। पॉली हाउस में लगाओ लागत एक बार और कमाओ बार बार।
2: संगम भैया राम
4: राम। राम भैया राम राम।
1: संगम भैया कैसे हैं?
4: मैं तो भैया आप ही जैसा हूँ एकदम टकाटक।
1: संगम भैया यहाँ मैं और दिलशान भाई पाली हाउस के लिए जो सामान था ले आए हैं, आप जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं। क्यों दिलशान भाई?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम भैया जिस दुकान पे आपने कहा था हमने सामान वहीं से लिया, इससे और दुकान से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है।
3: संगम भैया कितना भी सस्ता पड़ा हो लेकिन है तो महंगा ही।
4: अरे कल्लू भैया आप कह तो सही रहे हो लेकिन आज तो जरूर ये महंगा लग रहा है लेकिन आने वाले टाइम में यही तो आपको बरकत दे के जाएगा, तब आपका जो पान का खोखा है ज्यादा महंगा महसूस होगा और ये पॉली हाउस बहुत ही सस्ता लगेगा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो संगम भैया। कल्लू भैया आज हम ये पॉली हाउस लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि अगली बार इसको उखाड़ के बेचना पड़ेगा, एक बार ये लग गया तो सालों साल चलता है।
1: अरे दिलशान मियाँ किसे समझा रहे हो, तुम तो जाओ कल्लू अपनी पान की दुकान खोलो और हम भी तुम्हारे वहाँ आएंगे 10 साल बाद पान खाने।
3: चलो पान वान भैया छोड़ो, ये बताओ इस पॉली हाउस जो लगा रहे हो उससे क्या क्या फायदे होंगे?
4: अरे भैया पॉली हाउस में ऐसी फसलों का उत्पादन हो सकता है जो उस मौसम में बाजार में नहीं मिलती और जो फसलें बाजार में नहीं उपलब्ध हों और वो फसलें तुम बाजार में ले जाओगे तो बताओ कितना मुनाफा होगा, यानी 40 पैसे का बैंगन 40 रुपये में मिलेगा।
3: अरे भैया ये तो मुनाफे वाली बात है, तो क्या मैं इसमें आपकी सहभागिता ले सकता हूँ?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं दिलशान भाई
2: क्यों नहीं? लेकिन भैया जितना खर्चा हुआ है उतने के बराबर ही खर्चा देना पड़ेगा।
3: चलो ठीक है मेरा भी एक हिस्सा जोड़ लो।
4: अरे ये हुई ना बात, तुम भी समय के साथ साथ चलने लगे हो, इसका मतलब थे बुद्धू और बन गए महात्मा बुद्ध।
5: कार्यक्रम खेती बाड़ी में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपनी बातें। अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे एक लघु नाटकिया जिसमें हम जान रहे थे कि किस तरह से पॉली हाउस होते हैं और हमारे किसान साथी कैसे उसमें नर्सरी लगाकर कुछ फायदा ले सकते हैं। चलिए श्रोताओं अब हमारा वक्त हो चला है अगले सेगमेंट का। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो नई पद्धति के बारे में हमें बता रहे हैं तो कैसे हमारे किसान साथी उस नई पद्धति का फायदा ले सकते हैं। लेकिन श्रोताओं उससे पहले हम यहां पर सुन लेते हैं एक गीत को।

0: पार्टी जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: सर्वप्रथम तो है कि पाली हाउस बड़े काम की चीज है और खास तौर पे जो है बेमौसमी सब्जी उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका अंग होता है कि इसमें आप 6 से लेकर 8 गुना तक ज्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ दूसरी भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। जो भी आप सब्जी लेते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप बिना सीजन के आप उगाते हैं तो हमारी जनसंख्या भी देखते हैं, ये भी है कि हम जो है सब्जी उत्पादन अपना जो है जितना हो रहा है उससे हम बढ़ा देते हैं तो हमें बहुत सारी जो है सब्जियां जो है बिना मौसम में खाने को लिए मिलती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे लिए। देखिए पॉली हाउस कई तरह के होते हैं और जैसे आपका लो कास्ट है, मीडियम कास्ट है, हाई कास्ट है, तो हमारे किसान भाई किस तरह का पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं कास्ट उस पर निर्भर करता है। इसमें जो हम पॉली सीट यूज करते हैं उसमें भी बहुत तरह की पॉली सीट आती है कि एंटी डस्ट है, एंटी सल्फर है, एंटी फॉग है, तो ये लागत तो इस पर निर्भर करता है कि हमारे किसान भाई किस चीज का बनाते हैं। आप बांस का भी बना सकते हो साधारण पॉली हाउस, आप तो चाहे आप अब तो जीआई पाइप्स आती हैं उसका भी आप पॉली हाउस बना सकते हो। किस तरह का बनाते हैं ज्यादा करके किसान भाई जो हमारी हमारा प्रदेश है नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हम लोग के लिए लाभकारी होता है। बनवाते समय इसमें एक ही बात का ध्यान रखते हैं कम से 60 से 70% इसमें वेंटिलेशन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बीमारियों वगैरह का प्रकोप बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बनवाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पॉली हाउस बिल्कुल आपका न हो जहां पे छाया आती हो या ऐसी जगह न हो जहां पे पता लगा बरसात के दिनों में पानी भर गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेंस वगैरह से थोड़ा घिरा हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जानवर उसके पास कम से कम जा सके। पानी का स्रोत उसके आसपास होना चाहिए और बाजार से भी नजदीक हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीजें हैं और एक महत्वपूर्ण है कि पॉली हाउस बना लेते हैं तो चूंकि हम ठंडी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते हैं किसान भाई पॉली हाउस अगर बना, ऐसा नहीं कि जब भी जो ये आता है और पॉली हाउस खोला और अंदर घुमाने के लिए चले गया, पॉली हाउस इसके लिए नहीं होता है। पॉली हाउस को कम से कम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बनाते समय एक और ध्यान रखिएगा कि दरवाजे जो हैं आपके बिल्कुल सामने की तरफ न खुले, थोड़ा सा घूम के आप दरवाजा बनाइए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट अंदर जाने जा नहीं पाते हैं, तो ये हमें काफी उससे लाभ रहता है। और जिन किसान भाइयों के जैसे पॉली हाउस बनवा चुके हैं 2-3 साल हो चुके हैं तो बरसात बीतने के बाद एक बार उसकी जो है पॉली सीट जो ऊपर होती है सर्फ से उसकी धुलाई जरूर कर दें क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम होता है कि बरसात के बाद पन्नी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी काई जैसी जमने लगती है, तो आप धुलाई कर दोगे तो उत्पादन जो है एक बार फिर से आपको दोबारा अच्छे प्रकार से मिलने लगेगा। और एक पॉली हाउस बनाते हैं तो आप पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाएं, कई सारे पॉली हाउस आपके लगे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं बिना तकनीकी जानकारी लिए हुए न बनवाएं तो बेहतर रहता है। एक बार आप जानकारी जरूर लें क्योंकि आपके उपयोगिता क्या है, कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, ये सब चीजों का जैसे उसमें मिस्ट सिस्टम लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, तो हम सारी चीजों की जानकारी देते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और कितना बड़ा पॉली हाउस आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कम से कम आपका होता है कि 100 वर्ग मीटर का तो होना ही चाहिए, तो 100 से लेकर 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस अच्छा माना जाता है। इन सब चीजों को बनाए और लगाने का होता है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा, तो सावधानी के लिए भी आपको जो दवाएं हैं और जो डोज है बाहर से थोड़ा अलग होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो आप किसी वैज्ञानिक से या संस्था से जुड़े रहें। बस ये है कि नहीं कि आप सब्जी का जैसे खेती से लगातार आय बढ़ाने का ये है कि खेत को हम कभी खाली ना छोड़ा जाए और पहले से सोच के डाइवर्सिफिकेशन की एक बात होती है कि ज्यादा तरह की फसलों का चुनाव किया जाए। बहुत सारी जैसे बीच में छोटा छोटा जैसे आपका गैप आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोबिया की बात होती है कि आपका गेहूं कटेगा और उसमें आप लोबिया थोड़े समय में 60 दिन में लगा के ज्यादा से ज्यादा जो धान कटने के बाद आप लगा के ले सकते हैं, गेहूं और उसके लगने के पहले जो है आप उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो आप थोड़े थोड़े समय में, जैसे मूली एक ऐसी सब्जी है आप इसको साल भर में 8 बार लगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि 2 फसल के बीच में जो है हमारा थोड़ा गैप हो रहा है 25 दिन 40 दिन, तो आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करिए, लगाइए और आमदनी ले लीजिए। बिल्कुल भी हमें जो अगर हम लगातार लगे रहें और सोच बनाए रखें, खासतौर पर उन सब्जियों को भी जैसे लगता है कि साल भर आमदनी की बात है, तो कुछ किसान भाइयों को पॉली हाउस वगैरह भी बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना मौसम में भी जो है सब्जी हम लगा के आप जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। और लगाने सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाई जैसे है कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस सब्जी को लगाने जा रहे हो उसमें लागत कितनी आएगी और उसका बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है। तो जहां भी आप लगाने चाहो ये नहीं कि हमने कह दिया कि कोई भी सब्जी आप साल भर उगाते रहिए, इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप सब्जी उत्पादन शुरू करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा बहुत कोई नई सब्जी आप जैसे एग्जोटिक आप लेट्यूस लगाना चाहते हैं, सेल्ली लगाना चाहते हैं, इस तरह की सब्जियों की अगर खेती करना चाहते हैं तो एक बार बात जरूर कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जैसे हमारे दिल्ली है वहां आपको मूल्य बहुत ज्यादा उसका मिलेगा। तो इस तरह की चीजों में लगने से पहले एक बार बाजार को देख ले, वैज्ञानिक सलाह जरूर ले ले। और मुझे लगता है कि ऐसी सब्जी है जैसे टमाटर तो पूरे साल भर, और किसान भाई देख रहे हैं कि हर एक सब्जी पूरे साल भर मिल रही है, मिल कहां से रही, जब कोई किसान उगा रहा तभी तो मिल रही है आपको, तो दूसरा उगा सकता है हमारे देश के दूसरे भाग में उगा सकता है तो हम क्यों नहीं उगा सकते। तो पूरा है कि सब्जी से अगर व्यवसाय में लगा जाए तो हम पूरे साल भर जो है उसमें लगे रहेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हमें आधुनिकीकरण करना पड़ेगा कि हमें जो है पाली हाउस है, मल्च है, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, कुछ नई चीजें जो आई हैं, नई प्रजातियां हैं, इनका हम समावेश करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि साल भर जो है हमारा जो परिवार, हम खुद भी अच्छी सब्जी खाएंगे, दूसरे को भी अच्छा खिलाएंगे। तो ये जैसा कि है कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो सब मिल के चले तो सभी अच्छा ही अच्छा।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना विषय विशेषज्ञ को, तो काफी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी हमारे किसान साथियों के मन में जो भी सवाल चल रहे थे इस खेती को लेकर, और साथ में नई पद्धति को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास का क्लाइमेट एकदम से खराब होता चला जा रहा है, पानी की कमी हमें देखने में आ रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन से वे बीज हैं जिनका चयन करके हम अपने खेतों में लगा सकते हैं और जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा एक मिल सकता है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं और आइए इसी कार्यक्रम में हमारे साथ पशुपालन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि पशुपालन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो इस मौसम में हम कैसे पशुपालन पर ध्यान दे सकते हैं, क्या चीजें उनके लिए सही होती हैं, क्या हमें करना चाहिए पशुधन के साथ, तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
4: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें, साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यवसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
5: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, उस इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई। मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना होए।
4: वहीं PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाद देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है, इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
6: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है, सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाज सर, जो हमारे अभी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है, माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं, तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
7: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
3: जी हां साथियों, अभी आप सुन रहे थे सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से साथियों हम जब खेतों में चावल उगाते हैं और उसको सीधा ही हम मंडी पर बेच देते हैं जिससे हमें बहुत ही कम मुनाफा और सीमित मुनाफा मिलता है, लेकिन अगर हम उन्हीं चावलों का कोई और प्रोडक्ट बनाकर तैयार करें, उनकी पैकिंग कर अगर बेचें तो उससे 2 गुना फायदा हम कमा सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें समझने की और एक प्लान करने की कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में दालें बहुत ज्यादा होती हैं, अगर आप किसी और सब्जी की बहुत ज्यादा पैदावारी करते हैं, मान लीजिए आपका आलू बहुत ज्यादा होता है, तो आप आलू ऐसे ही बेचने की बजाय आप उनकी चिप्स बनाकर भी बेच सकते हैं बाजारों में, जो आपकी अच्छे दामों में चली जाएगी, जिसका अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान साथियों को सीधे पहुंच सकता है। तो साथियों ज्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि हमारा समय हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो आज का ये कार्यक्रम खेती बाड़ी साथियों आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर फोन के माध्यम से बताना ना भूलेगा और साथ में हमें सुझाव भी दीजिएगा, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम आपके अनुसार यानी आपके लिए फायदेमंद है तब भी हमें बताइएगा और फायदेमंद अगर नहीं है तब भी हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है
7: 9425416303। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ साथ में यदि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ साथ में विषय विशेषज्ञ की सलाह भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो हम अपने विषय विशेषज्ञ से सलाह लेकर आपके सवालों का जवाब हम कार्यक्रम के माध्यम से दिलाएंगे। और हम साथियों कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं वो छोटी सी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचनी चाहिए जो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। खासतौर पर अगर देखा जाए कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे वर्षा जी ने बताया था कि हम सीधे जैसे चावल को बोते हैं और उसको बेच देते हैं तो डायरेक्ट ना बेचकर, या फिर आलू यहाँ पर जो भी सीजनेबल चीजें रहती हैं जो उगाई जाती हैं खासतौर पर झाबुआ में, तो उनको सीधा ना बेचकर उनको पैकिंग कर यदि संगठन के माध्यम से अगर हम उसको बेचा जाए तो आपको दाम भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी आपको अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझनी होगी, सोचनी होगी और अपने जीवन में अपनानी होगी। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो आपके रेडियो साथी मनीष
3: और आपके रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। जिंदगी के रंग गीतों के संग के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ इस प्रोग्राम में है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका नाम है सुरेंद्र जी। बाकी सुरेंद्र जी हमें अपने बारे में खुद बताएंगे, उसी में मजा आएगा, वो खुद बताएं अपने बारे में। तो सुरेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच इन कमिंग टू अवर प्रोग्राम। और हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौन है आप?
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और सभी दर्शकों का। और सबसे पहले मैं सर आपके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ, आप और सभी श्रोताओं के लिए।
0: बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए जी।
1: ये नसीबों में लिखी कहानी ये सारे, वरना मिलना हमारा तुम्हारा न होता, फिर यू सुबह और शाम में सारी उम्र बीत जाती, यूं खुशियों भरा दिन हमारा तुम्हारा ना होता, यूं खुशियों भरा दिन हमारा तुम्हारा ना होता।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों आपने सुना, बेहद बेहद खूबसूरत, बहुत छोटी सी एक नज्म, प्यारी सी, जिसका एक बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा संदेश सुरेंद्र भाई दे रहे हैं। तो सुरेंद्र भाई आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: सर मैं वर्तमान में भोपाल मध्य प्रदेश जिलों के शहर में रहता हूँ, और एक नया नाम अभी जोड़ा हूँ अपने साथ में कि सुंदर वीर कैलारसी के नाम से आने वाले समय में देश और दुनिया के लोग मुझे जाने।
0: बहुत बढ़िया। तो आप
1: वर्तमान में सर मैं एज ए फार्मासिस्ट काम कर रहा हूँ हॉस्पिटल में, और एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी काम कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने सुना, सुरेंद्र जी एक कवि हैं और आगे आने वाले वक्त में बहुत बहुत प्रसिद्धि पाएंगे। हम दुआएं करते हैं, हम ईश्वर से मनाते हैं। बाकी वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं।
2: समल सुर पकड़ के

0: बहुत बढ़िया, बहुत पढ़ा है। सुरेंद्र भाई मुझे ये बताइए, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: सर बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारणवश मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसके बाद मैं फार्मेसी किया, तो अभी उसी प्रोफेशन में हूँ, डॉक्टरों के आसपास ही।

0: तो वही खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ी सी कम हो रही है।
1: बहुत बढ़िया बात कही सुरेंद्र भाई आपने। सुरेंद्र भाई, मैं भी एक फार्मासिस्ट हूं, इसलिए मुझे पता है फार्मासिस्ट की
0: जी
1: जरूरत क्या है, फार्मासिस्ट का रोल क्या है।
0: जी
1: किसी
0: जी
1: जमाने से डॉक्टर्स का काम सिर्फ डायग्नोज करना हुआ करता था और सजेस्ट करना होता था कि आप ये ले लें तो आप ठीक हो सकते हैं। ओरिजिनली बाकी का काम तो फार्मासिस्ट का ही होता था, दवाई को बनाना, दवाई को पेशेंट को बताना कि कैसे लेना है, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, दूध से, छाछ से, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब काम फार्मासिस्ट के होते थे। तो मेरा मानना यह है कि किसी भी सूरत में फार्मासिस्ट का काम डॉक्टर से कम नहीं होता।
0: जी, इसमें सर एक आपके माध्यम से दर्शकों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ
1: जी
0: कि जो मेडिसिन होती है वो जेनेरिक मेडिसिन होती है और ब्रांडेड मेडिसिन होती है, और भारत दुनिया के मोर देन 70 कंट्रीज को मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है वर्तमान में।
1: बहुत बढ़िया।
0: और एक जो जरूरी चीज है कि दुनिया में जेनेरिक मेडिसिन मतलब ब्रांड नाम के से ना मिलते हुए मॉलिक्यूल के नाम से दवाई मिलती है, तो उसमें फार्मासिस्ट का रोल और भी ज्यादा अहम हो जाता
1: जी,
0: है। जी,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: डॉक्टर ओनली
1: फरमाया।
0: डिस्पेंस करता है सर, और बाकी डॉक्टर्स उसको डिस्पेंस करते हैं, और फार्मासिस्ट डिसाइड करता है कि उसको कौन सी कंपनी का मॉलिक्यूल देना है उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए।
1: बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई,
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: एप्रोप्रिएट और बिल्कुल सच्ची जानकारी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमें अपनी कोई एक कविता सुनवाइए ना।
0: सर, मैं आपको एक छोटी सी, मैंने एक कविता लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ।
1: स्वागत है।
0: उसका जो शीर्षक था कि मैं शिखर छूना चाहता हूँ, मैं क्षितिज छूना चाहता हूँ, मैं शिखर छूना चाहता हूँ, मैं क्षितिज छूना चाहता हूँ, मैं शिद्दत से ही जीना और शिद्दत से ही मरना चाहता हूँ। और उसकी जो अगली पंक्तियां हैं कि न आहट हो और न आहत हो, न आहट हो और न आहत हो, मैं मशहूर ऐसा होना चाहता हूँ, मैं क्षितिज छूना चाहता हूँ, मैं शिखर छूना चाहता
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहद संजीदा कविता। किसी भी व्यक्ति के अहम को, मनन को, मन को छू जाने वाली, हम इस कविता को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं दोस्तों। बहुत खूब
0: हूँ।
1: कहा
0: बिल्कुल
1: सुरेंद्र भाई, बहुत खूब कहा। चलिए आगे बढ़ते
0: धन्यवाद।
1: हैं और एक छोटा सा गीत सुनते हैं, इसी रंग में रंगा हुआ।

0: तो सुरेंद्र भाई, स्कूल में आपका प्रिय विषय कौन सा था और क्यों?
1: सर, स्कूल में मेरे दो विषय बहुत ही प्रिय थे, एक साइंस और दूसरा हिस्ट्री। सर, साइंस इसलिए क्योंकि मुझे साइंस से नए नए चमत्कार, नए नए आविष्कार देखने को मिलते थे, तो वो सहज ही मुझे आकर्षित करता था। दूसरा, इतिहास से मुझे भूतकाल में क्या देश और दुनिया में चीजें रही और उसको एक कहानी के माध्यम से पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था।
0: जी, बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना, हमें भी पसंद होते हैं बड़े सारे विषय, लेकिन दरअसल क्यों पसंद होते हैं इस बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। मेरा सुरेंद्र भाई से यह सवाल पूछने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम सब लोगों को जानने का मौका मिले कि हम भी अपनी सोच में कैसे बदलाव ला सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई। चलिए
1: जी,
0: आगे बढ़ते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कोई एक अच्छी सी कविता सुनाएं अपनी।
1: सर मैं एक छोटा सा एक शेर सुना देता हूं
0: जी
1: कि मोहब्बत का जज्बा जगा कर तो देखो, मोहब्बत का जज्बा जगा कर तो देखो, दिल को तुम दिल बना कर तो देखो, और हम तो तुम्हें अपना बना ही चुके हैं, तुम भी हमें अपना बनाकर तो देखो, तुम भी हमें अपना बनाकर तो देखो।
0: भाई वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बहुत बहुत खूब, शानदार शानदार शेर। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं, कुछ इसी रंग में सराबोर।

0: बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई, आप कवि हैं, कलाकार हैं, मेरा मानना है कि आप रचनात्मक में विश्वास रखते हैं, रचनात्मकता में विश्वास रखते हैं, तो इस वजह से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सोच के बताइएगा कि आपके विचार में 5 सालों में ये दुनिया कैसी दिखाई देगी, क्या होगा इसका?
1: सर जहां तक मुझे जो एक प्रिडिक्शन कह सकते हैं होता है, कभी कभी लगता है कि जिस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आविष्कार हो रहे हैं, उसमें एक जो आधुनिक जो तरक्की है, भौतिकवाद का जो एक बहुत ही एक नया रूप देखने को मिल रहा है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ में एक जो सामाजिक और स्पिरिचुअल तरीके से देखें तो कहीं ना कहीं पतन की ओर देश और दुनिया बढ़ रही है सर। तो हमें इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा कि हम तरक्की करें, उसके साथ साथ हमें नैतिकता को देखना पड़ेगा, आपको सामाजिक वैल्यूज को देखना पड़ेगा और एक स्पिरिचुअल जो वैल्यू है जिससे कि व्यक्ति को कंप्लीट इनर और आउटसाइड से व्यक्ति को कंप्लीट कनेक्ट करे और जीवन को भरपूर आनंद से जिए। तो आने वाले समय को मैं इस तरीके से देखता हूँ, उसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी और जीवन सभी का खुशहाल रहे।
0: तो सबसे पहली बात तो यही है सुरेंद्र भाई की, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, मुझे ये बताएं आप अपने आप में क्या बदलाव लाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में एक यूनिट है, जस्ट वन यूनिट, जिसको हम बदल सकते हैं, वो है हम। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा क्या करेंगे अपने आप को बदलने के लिए या अपने आप को स्थिर रखने के लिए अगले 5 सालों में, आप वो बताओ भैया।
1: सर एक मैं छोटी सी मुहिम चला रहा हूँ पिछले 5-6 साल से
0: जी,
1: कि मैं डेली एक सकारात्मक विचार लिखता हूँ, उसको हिंदी, इंग्लिश और बंगाली 3 लैंग्वेज में लिखता हूँ। तो मैं खुद को सकारात्मक रहने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं मैं सकारात्मक रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक नई चीज सीख रहा हूँ और लोगों को सिखाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। दूसरा सर एक पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा प्रदूषण के लिए बीच बीच में थोड़ा सहयोग करता हूँ और कुछ न कुछ ओकेशन आते हैं तो मैं उसमें प्लांटिंग वगैरह करता हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस मेरा यही तात्पर्य था, मेरा यही उद्देश्य था। दोस्तों, सुनने वालों, मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों, दुनिया को सुधारने का जिम्मा मत लीजिए क्योंकि नहीं होगा। आपको बात सुनकर बड़ी अजीब सी लगेगी लेकिन अपने आप को अगर हमने सुधार लिया तो हम भी तो इस दुनिया के एक हिस्सा ही हैं। अगर हमने अपने आप को सुधार लिया तो दुनिया सुधरती चली जाएगी
1: जी।
0: हम में से कितने लोग हैं जो विनोबा भावे बन जाएंगे या महात्मा गांधी बन जाएंगे या कलाम बन जाएंगे, कलाम साहब बन जाएंगे? अरे छोड़िए ना उन बातों को साहब, जो प्रैक्टिकल है वो करिए, वो ये कि हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने को संभाल लें। मेरा सभी से करबद्ध यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, अपने को देखिए, दूसरों को छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया। तो सुरेंद्र भाई, आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई शेर, कोई नज्म, कोई कविता हमें सुनाए।
1: सर एक जो बात है जो कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात कही कि हम सभी इंसान एक जैसे हैं और हमें खुद में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना चाहिए, तो उससे जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि आग है, पानी है, मिट्टी है और ये हवा है मुझ में, फिर तो ये मानना ही पड़ता है कि खुदा है मुझ में, और आईना

0: यह तो बताता है कि मैं क्या हूं, पर आईना इस बात पर खामोश है कि क्या क्या है मुझ में, क्या क्या है मुझ में। तो आपने जो बात कही सर, बिल्कुल हमें अपने आप को थोड़ा देखना पड़ेगा, खुद की तरफ खुद को सुधारेंगे तो जग अपने आप सुधर जाएगा सर।
1: क्या बात कही सुरेंद्र भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमें अपने बारे में ये सोचना होगा कि क्या क्या है हम में। अभी सुरेंद्र भाई ने अपनी कविता में कहा क्या क्या है हम में, अपने अंदर पहचाने। चलिए तो आगे बढ़ते हुए इसी तरीके का ये प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बेहतरीन बेहतरीन। सुरेंद्र भाई फर्ज कीजिए, वैसे तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपका जी, कोई जी। दुश्मन ना हो इस दुनिया में, कभी कोई दुश्मन ना हो, लेकिन फिर भी एक अंदाजा, एक फर्ज कीजिए, एक इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं कि अगर आपका कोई बुरा दुश्मन आपके बारे में कोई किताब लिखने बैठ जाए तो उसका शीर्षक क्या रखेगा वो?
1: सर आपने बड़े अजीब सवाल कर दिया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको और दर्शकों को कि अभी तक तो मेरा कोई दुश्मन बना नहीं है, और आने वाले समय में ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरा दुश्मन ना रहे, दोस्त ही दोस्त बनते रहे जीवन में। लेकिन अगर भी कहीं किसी कारणवश कोई रहा तो मेरा तो यही है, कुछ मेरे जीवन में जो भी प्रेम है या जीवन का जो दर्शन है, जीवन दर्शन, मेरा जीवन दर्शन टाइटल के नाम से मेरे जीवन के जो भी अनुभव है उनको मैं देश और दुनिया के सामने शेयर करना चाहता हूँ।
0: नहीं, ये तो आप करोगे
1: जी,
0: ये तो आप करोगे। मैंने आपसे वही रिक्वेस्ट करी कि फर्ज कीजिए, सिर्फ अंदाजा लगाइए कि कोई दुश्मन आपके बारे में

0: किताब लिखे तो उसका शीर्षक वो क्या रखेगा? आप नहीं, वो दुश्मन आपका शीर्षक क्या रखेगा?
1: सर ये तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मुझे कैसे देखता है, मुझे सकारात्मक देखता है नकारात्मक देखता है, और उसके मन में मेरी छवि कैसी है मेरे व्यक्तित्व की। तो जो उसे उसे स्वेच्छा से लगे मैं उसे स्वेच्छा से स्वीकार करूं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात, बहुत प्यारी बात सुरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। तो आगे बढ़ते हुए मुझे एक कविता और सुनाए, या नज्म या शेर।
1: सर एक कबीर की कुछ लाइन है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान
0: जी,
1: और रसरी आवत जाते ही सिल पर होत निशान। तो हमें जीवन में यही देखना पड़ेगा, हमें सर सकारात्मक रहना पड़ेगा और हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा, बेहतर जीवन के लिए प्रयास करें और सब चीजें ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएंगी।
0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा सा संदेश। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और छोटा सा एक गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया बात है सुरेंद्र भाई। क्या आपके जहन में, आपके मानस में, आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल है क्या जो शायद आप चाहते हो कि मैं आपसे पूछ लूं और फिर उसका आप उत्तर दे दें? क्या ऐसा कोई सवाल है आपके पास?
1: सर सवाल तो नहीं है, लेकिन अगर जो मैं चाहता हूं कि लोग आपकी व्यक्तिगत जीवन से या आपके जीवन से जो जो अनुभव है, आपका जो काम का जो अनुभव है उससे जुड़ी हुई बातें अगर पूछें तो मैं और स्पष्टता से अपने जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि वही मेरे जीवन के अनुभव हैं और वही मैंने जो सीखा है समझा है वो मैं आपके और दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँ।
0: बहुत बढ़िया। दर्शकों की तरफ से मैं आपसे पूछता हूँ, स्पिरिचुअलिटी का जिक्र किया आपने, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म, तो आध्यात्म में आप क्या करते हैं अपने आप को आध्यात्मिक बनाने के लिए? आपने अभी भी कहा ना कि आपसे संबंधित, आपके चरित्र से संबंधित, आपके क्वालिटी से संबंधित कोई सवाल पूछे तो मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने स्पिरिचुअलिटी का नाम भी लिया था, तो आप आध्यात्म में क्या करते हैं?
1: सर इसके लिए एक छोटा सा मैं प्रयास करता हूँ हफ्ते में 2 से 3 दिन कि मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। एक मेरे कॉलोनी के पास में एक विश्वास मेडिटेशन के नाम से सेंटर है, तो वहाँ पे कि एक्चुअली हमें समझाया जाता है कि आप कैसे साक्षी भाव रख सकते हैं, अपने आप को कैसे देख सकते हैं, अपने विचारों को कैसे देख सकते हैं, जान सकते हैं
0: जी।
1: उसके माध्यम से कहीं ना कहीं मैं अपने आप को काम अनुकूल रख पाता हूँ और अपने आप को एनालिसिस करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा,
1: दूसरी एक जो जरूरी बात है, मेरे एक गुरुजी कहा करते थे कि जो व्यक्ति जैसा होना चाहता है और वैसा होने के लिए उसको अनुकूल वातावरण मिल जाए तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति स्पिरिचुअल है और उसको उसके व्यक्तित्व को निखारने का पूरा अवसर दिया जा रहा है और उसके साथ में तो वो ईश्वर की तरफ से भी और खुद की तरफ से भी वो स्वतंत्र है और एक बेहतर जीवन के लिए प्रयास कर रहा है।
0: बहुत बढ़िया, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मेरा मन कर रहा है आपसे इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। आपके गुरुजी ने, आदरणीय गुरुजी ने कहा कि कोई व्यक्ति को अगर उपयुक्त वातावरण मिलता है तो वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को उपयुक्त वातावरण ना मिले तो वो बेचारा क्या करे? तो वो तो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, वो तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसका ऐसा उसकी बेचारे की क्या गलती रही कि उसको उपयुक्त वातावरण नहीं मिला?
1: नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है सर। इसमें ऐसा है कि संघर्ष उसके सामने जो एक चुनौती खड़ी है वो संघर्ष की चुनौती। तो गुरुजी इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहे हैं कि आदमी को संघर्ष में जाने से आदमी के अंदर विजडम का और विजन का निर्माण होता है, और हर आदमी का अपना एक इंडिविजुअल लाइफ है, उसको जब तक वो संघर्ष नहीं करेगा, जब तक वो जीवन के दोनों पक्षों को, सुख और दुख को नहीं देखेगा, अमीरी गरीबी नहीं देखेगा, तो वो जीवन की कंप्लीट यात्रा नहीं कर पाएगा, वो एक परिस्थिति को जी पाएगा। तो बेहतर जीवन के निर्माण के लिए उसमें दुख और कष्ट की भी बात होती है, करते हैं वो, कि व्यक्ति को जो दुख होता है वो भावनात्मक रूप से होता है, जो कष्ट होता है वो शारीरिक हो सकता है, वही व्यक्ति के सुख और दुख की वजह भी है।
0: तो इसमें उपयुक्त वातावरण कहाँ आया?
1: जी, उपयुक्त वातावरण मीन्स मेरा ऐसा कहना था कि एक व्यक्तित्व के लिए, देखो उपयुक्त मीन्स ना कि वो जैसा होना चाहता है उसको वो करने की स्वतंत्रता मिल जाए, उसको सोचने की स्वतंत्रता मिल जाए, उसको करने की स्वतंत्रता मिल जाए, और वो जो होना चाहता है, मतलब वो व्यक्तित्व के बारे में ये बातें हैं कि जैसा वो व्यक्तित्व होना चाह रहा है वैसा अगर उसको करने का उसमें कोई घर वाले, परिवार वाले या बाहर वाले लोग उसके जीवन में इंटरफेयर ना करें तो उसको मैं उपयुक्त वातावरण कहना चाहूंगा।
0: काफी मुश्किल बात है ये, क्योंकि आपका परिवार वाले, आपके दोस्त यार आपके जीवन में हस्तक्षेप ना करें, ये तो बड़ी ही भारी बात है, क्योंकि वो तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि आप उनके साथ रह रहे हो।
1: जी बिल्कुल।
0: या तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के हम जंगलों में चले जाएं तो शायद उपयुक्त वातावरण मिले। चलिए कोई बात नहीं, ये गूढ़ सब्जेक्ट है जिसको बहुत समझने की जरूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके का एक गीत सुनते हैं।

0: आसान सा सवाल सुरेंद्र भाई, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और वो रंग आपको क्यों पसंद है?
1: सर जो मेरा जो फेवरेट कलर है वो ब्लू कलर है, और जो ब्लू कलर है आसमान नीला है, पानी नीला है, तो ब्लू कलर एक अलग टाइप का आत्मविश्वास से भरा हुआ शांति का प्रतीक है और स्थिरता का प्रतीक है, और काम एंड कूल एंड मुझे रखता है देखने के लिए, आंखों को थोड़ा शीतलता देता है, इसलिए मुझे ब्लू कलर मेरा फेवरेट कलर है।
0: बहुत बढ़िया बात कही मेरे भाई, बहुत प्यारी सी बात कही आपने। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बताइए ना, आपके पास आपके पसंदीदा रंग ब्लू की क्या क्या चीजें हैं?
1: सर ब्लू में पेन प्रेफर करता हूँ, ब्लू में टाई यूज करता हूँ, घर में देखेंगे तो जो बेडशीट होता है वो भी मैं ब्लू रखने की कोशिश करता हूँ, कुछ मेरा मेडिसिन जो बॉक्स होता है प्राइमरी किट, उसका मैं ब्लू कलर का डब्बा रखता हूँ।
0: बहुत बढ़िया।
1: और ब्लू शर्ट पहनना पसंद करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, इसी बात को तो मैं जानना चाह रहा था कि अगर आपको कोई एक कलर पसंद है तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करेंगे आपकी हर चीज में वो रंग आ जाए, आपकी बाइक में, आपके स्कूटर में, आपके कार में, आपके खान पान में, आपकी प्लेट्स में, आपके घर के रंग रोशन में। सही कहा आपने, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बात। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई। ऐसा कोई गीत, कोई गाना है क्या जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से सूट करता हो?
1: सर एक काला पत्थर का मूवी का एक गाना है
0: जी
1: तो वो मुझे मुझे मुझे काफी पसंद है, जिसमें वो गाड़ी पे जाते हैं और गाना गाते हैं। मैं आपको उसको गुनगुना के एक बार कोशिश करूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू
1: जी। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक कदम किसी मुकाम पर जो रुक गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: अरे वाह, क्या बात है क्या बात है, बेहद बेहद खूबसूरत गीत, बेहद खूबसूरत गायकी, क्या बात है। आज एक और नई स्किल, नई प्रतिभा निकल के आई है सुरेंद्र जी के अंदर। तो चलिए दोस्तों,
1: जी,
0: इसी
1: जी।
0: गीत को सुनते हैं आगे बढ़ते हुए।

0: बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई, अगर आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर, ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ बैठकर कुछ बातचीत करने का मौका मिले तो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे आप?
1: सर, एक जो मैं बैठना चाहूंगा, बुद्ध बुद्ध के साथ मैं बैठना चाहता हूँ। उनके विचारों को, उनके जीवन के अनुभवों को मैं समझना चाहूंगा और उनसे रूबरी हो पाऊंगा कि एक व्यक्तित्व ने देश और दुनिया में एक

0: ही प्रभाव पैदा किया। तो मैं उनके साथ बैठ कर कुछ गुफ्तगू करना चाहूंगा, जीवन के अनुभव, जीवन का जो सार है उसको मैं जानने का प्रयास करूंगा।
1: क्या पूछेंगे आप उनसे वैसे भी?
0: सर, मैं यही पूछना चाहूंगा कि आपने किस तरह से लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ा, किस तरह से लोगों को आपके व्यक्तित्व के प्रति लोग इतने आकर्षित हुए, तो उस तरह से हम अपने व्यक्तित्व को मैं कैसा एक ऐसा व्यक्तित्व बना सकता हूँ जिससे हम सभी के प्रति एक प्रेम का भाव पैदा करें, नफरत का भाव बिल्कुल ही खत्म हो जाए लोगों के अंदर से।
1: ये तो संभव नहीं है क्योंकि प्रेम का भाव और नफरत का भाव सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना दूसरे पहलू के एक पहलू हो जाए। रात है तो दिन है, दिन है तो रात है। हाँ, ये बात अलग है। हम क्या स्वीकारते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया
0: जी, जी
1: बहुत बढ़िया बात कही आपने, मजेदार। तो हमें एक और कविता सुनाइए अपनी।
0: सर, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक एक छोटा सा दो लाइन सुना देता हूँ।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: जो जो मुझे काफी पसंद है और मुझे अच्छी भी लगती है कि मंजिल मिल ही जाएगी यूं भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी यूं भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलेगी।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। तो ये भी आप ही की लिखी हुई शेर है?
0: ये सर किसी किसी अदर कवि का।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो भटके हुए तो लोग वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, क्या बात है।
0: जी जी,
1: जब तक आप निकलेंगे नहीं, कोशिश करेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, तो सफल कहां से होंगे। बड़ी बढ़िया बात कही है आपने साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया सुरेंद्र भाई, चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए क्या संदेश है आपका, कुछ मैसेज दीजिए उनको।
1: सर, मेरा सभी दर्शकों से यही एक विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप हमेशा सकारात्मक रहें, खुद के बारे में अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, और जो जितना हो सके आप थोड़ा सोशल मीडिया से, जो भी आपका मोबाइल है उससे दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि आप जब तक खुद को नहीं देख पाएंगे, खुद की तरफ झांक नहीं पाएंगे, तो आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ पाएंगी। तो जितना हो सके अपने आप में अपने जीवन को, खुद को महसूस करें, खुद के जीवन को खुशी के साथ जिए और लोगों को जीने दें, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपको।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई, मजा आया आपके साथ बात करके। कुछ आध्यात्म की बातें हुई, कुछ स्पिरिचुअलिटी की बातें हुई, कुछ मेडिटेशन की बातें हुई, आपकी बहुत खूबसूरत खूबसूरत ढेर सारी कविताएं हमने सुनी, नज्म सुनी, आपका नाम जाना, क्या बात है, बेहतरीन। दोस्तों, तो ये थे सुरेंद्र जी भोपाल से, थैंक यू सो मच।

दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न

मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं दोस्तों, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है प्रेरणादायक गीतों के साथ, प्रेरणादायक बातों के इस बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में। सपने देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। बने रहिए आरजे समीर के साथ। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

अगर आप अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें परियों की कहानियां सुनाएं। यदि आप उन्हें और भी बुद्धिमान बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाएं।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारी हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

0: चलो दोस्तों अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आज समीर के पास।
1: वैज्ञानिक चाहे जितनी खोज कर लें, ये बात कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि लोग जब उदास हो जाते हैं तो व्हाट्सएप से अपना डिस्प्ले प्रोफाइल क्यों हटा लेते हैं।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। दोस्तों हार यानी कि पराजय वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है, तो इसलिए हार से घबराएं नहीं।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत।

साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे, उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यही गीत।
1: सुनो और जोर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ।
2: आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

मौसम।

दाब देना चाहिए।

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुमारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: दुनिया, अरे किधर है रे तू?

एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम देने का पूरा मौका देते थे। उन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। आइए सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

0: शिकवा क्या, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है।
1: अरे क्या

0: काम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे।
0: सच भाई हुए हैं।

0: ワンマンモ
1: ア。महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को, खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी, जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आइए दोस्तों, सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: अरमान।
1: महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।
0: ओ, हो, हो, हो, हो।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

राजश्री जी का जन्म 8 अक्टूबर 1944 को मुंबई में हुआ था। राजश्री लोकप्रिय फिल्म निर्माता वी शांताराम और उनकी पत्नी और अभिनेत्री जय श्री की बेटी हैं। राजश्री ने घर बसा के देखो, गृहस्थी, नवरंग और स्त्री जैसी फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिकाएं निभाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। चलिए उनकी फिल्म का एक गीत पेश खिदमत है।

राजश्री बतौर अभिनेत्री अपने पिता वी शांताराम की 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों से फिल्म इंडस्ट्री में आई। इस फिल्म में वो जितेंद्र के साथ नजर आई थी। फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई और उनके अभिनय की भी तारीफ हुई। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत।

राजश्री की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती जा रही थी। उन्होंने शम्मी कपूर समेत उन दिनों के सभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के साथ काम किया। 1967 में राजश्री को राज कपूर के साथ अराउंड द वर्ल्ड में काम करने का मौका मिला। वहीं ब्रह्मचारी को उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। आइए हो जाए उनकी फिल्म का एक और गीत।

राजश्री को आखिरी बार सुपरहिट फिल्म नैना में शशि कपूर और मौसमी चटर्जी के साथ देखा गया था। इसके बाद वो कभी फिल्मों में नहीं आई और सिनेमा जगत से दूर हो गई। निजी पेशे

हुआ यूं था कि राज कपूर के साथ अमेरिका में फिल्म अराउंड द वर्ल्ड की शूटिंग के दौरान राजश्री की मुलाकात अमेरिकी छात्र ग्रेग चैपमैन से हुई। दोनों ने 3 साल बाद ही भारतीय रीति रिवाज से शादी कर ली और राजश्री फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। आज भी वो वहीं हैं। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: न झटका जुल्फ से

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम

0: गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे मेहमान जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है राहुल कुंभकार। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने मौका दिया और मैं आपके FM पर आया हूँ, बहुत शुक्रिया इसके लिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं, आप कैसे शायर बने, अपना थोड़ा सा परिचय दें।
1: जी जी समीर भैया, मैं राहुल कुंभकार मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से ताल्लुक रखता हूँ और शिक्षा में मैंने MA हिंदी एवं BEd किया हुआ है। एक निजी विद्यालय में मैं अभी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। उसी के साथ मैं गीतों गजलों की दुनिया में आया हूँ एवं कुछ शेर लोगों तक पहुंचे भी हैं। तो मेरा जो ये सफर शुरू हुआ था, मैं लगभग जब विद्यालय समय से ही मैं लिखता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने गजलों का जो नियम कायदा है वो थोड़ा बाद में सीखा, लेकिन अब कोशिश करता हूँ कि और अच्छा अच्छे से अच्छा कर सकूं।
0: बहुत खूब राहुल भाई, बहुत खूब। तो राहुल भाई मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पहली गजल हमको और हमारे सुनने वालों को सुनाएं प्लीज।
1: जी शुक्रिया भैया, मैं एक मतलब एक दो शेर पेश करता हूँ कि चट्टानों पर लगाओ चोट के दरिया निकल आए,

0: राहुल भाई आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, इससे पहले कि हम गुजारिश करें कि आप अपना अपनी अगली गजल हमें सुनाएं, एक छोटा सा सवाल। गजल गायकों में सबसे पसंदीदा गजल गायक आपके कौन है?
1: जी भैया, अगर मैं बात करूं तो जगजीत साहब मैं मुझे बहुत पसंदीदा गजल गायक लगते हैं
0: जी।
1: उनकी आवाज में जो मीठा सा दर्द है वो मुझे महसूस होता है। उन्होंने जो भी गजलें गाई हैं लगभग मुझे सारी गजलें पसंद हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। इसी वजह से शायद उन्हें गजल सम्राट कहा जाता है हिंदुस्तान में। बहुत
1: बिल्कुल।
0: तो राहुल भाई, मैं आपसे

0: साहब बेहद सीधे साधे इंसान हैं जिनको शायद छल कपट छू के नहीं गया। बाकी आप इनका ये शेर सुन लीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने सीधे व्यक्ति हैं। बहुत खूब राहुल भाई, बहुत खूब। तो अब मैं गुजारिश करूंगा कि आप एक गजल और सुनाएं हमारे सुनने वालों को।
1: जी देखिए, मैं एक बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ। मैं जब महानगरों में जाता हूँ तो बदलता हुआ परिवेश देखता हूँ तो उससे बड़ा प्रभावित होता हूँ। एक मतलब एक शेर मैंने कहा था कि दिलों के खून हुआ करते थे पहले,
0: जी
1: दिलों के खून हुआ करते थे पहले, हम ऐसे क्यों हुआ करते थे पहले। दिलों के खून हुआ करते थे पहले, हम ऐसे क्यों हुआ करते थे पहले। और शेर देखिए भैया आपको पसंद आएगा,
0: इरशाद।
1: खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन,
0: जी
1: खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन, यहाँ गेहूं हुआ करते थे पहले।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत ही प्यारा।
1: एक मतलब एक दूसरे और देखें कि
0: इरशाद, इरशाद
1: जी भैया, जब मैं उला और वो सानी हो गया,
0: जी
1: जब मैं मतलब यूं है कि जब मैं उला और वो सानी हो गया, एक उम्दा शेर यानी हो गया।
0: जी
1: जब मैं उला और वो सानी हो गया, एक उम्दा शेर यानी हो गया। और शेर यूं है कि कल तलक तो मैं फकत किरदार था, कल तलक तो मैं फकत किरदार था, आज मैं खुद एक कहानी हो गया।
0: खुद एक कहानी हो गया, क्या बात है।
1: आज मैं खुद एक कहानी हो गया। और एक शेर यूं है कि याद उसको इस कदर मैंने किया, याद उसको इस कदर मैंने किया, याद अब वो मुंह जबानी हो गया, याद अब वो मुंह जबानी हो गया। गांव सारे जुड़ गए एहसास के, गांव सारे जुड़ गए एहसास के, दर्द की मैं राजधानी हो गया।
0: वाह,
1: दर्द की मैं राजधानी हो गया। और आखिरी शेर इस गजल का
0: इरशाद
1: तो मुझे बहुत पसंद है। एक दफा सहरा में पानी क्या कहा, एक दफा सहरा में पानी क्या कहा, लफ्ज मेरा पानी पानी हो गया।
0: ओहो,
1: एक दफा सहरा में पानी क्या कहा, लफ्ज मेरा पानी पानी हो गया।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारा, क्या जबरदस्त शेर, बहुत बहुत बढ़िया। मुझे तो ऐसा लगता है पानी को भी शर्म आ गई होगी कि मुझे भी प्यार मोहब्बत से जितना निर्मल रहना चाहिए, जितना स्वच्छ रहना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं तो हमारे भाई बहुत, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी गजल। तो राहुल भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंद के किसी गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम सुनवाएं।
1: जी जी भैया, मुझे मेहदी हसन साहब भी बहुत प्यारे लगते हैं, उनकी जो नाजुकी है गजल में, जो उनका मिजाज है
0: जी।
1: उनकी एक गजल है, उन्होंने गाई है, गुलों में रंग भरे, वो गजल मैं चाहूंगा कि आप वो दर्शकों तक, सॉरी श्रोताओं तक पहुंचाएं।
0: बेहतरीन, बेहतरीन। आइए दोस्तों सुनते हैं मेहदी हसन साहब की सौंधी सौंधी आवाज में गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: बहुत बढ़िया। राहुल भाई आगे बढ़ते हैं
1: जी।
0: आपसे गुजारिश है कि हमारे सुनने वालों को एक गजल और सुनाएं प्लीज।
1: जी मैं कोशिश करता हूं। एक मतलब एक दो शेर यूं है कि अंतर मन में घोर उदासी
0: जी,
1: अंतर मन में घोर उदासी कल भी थी और आज भी है
0: जी।
1: अंतर मन में घोर उदासी कल भी थी और आज भी है, सारी दुनिया खून की प्यासी कल भी थी और आज भी है।
0: आज भी है, वाह।
1: शेर यूं है कि बच्चों ने मंचूरियन बर्गर पिज्जा डोसा बांट लिया।
0: ओहो,
1: बच्चों ने मंचूरियन बर्गर पिज्जा डोसा बांट लिया, माँ की प्लेट में रोटी बासी कल भी थी और आज भी है।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: कल भी थी और आज भी है। और एक शेर यूं कहा था कि हमने हमने आयातित पौधों को
0: जी
1: पानी वानी खूब दिया
0: जी,
1: हमने हमने आयातित पौधों को पानी वानी खूब दिया, लेकिन घर की तुलसी प्यासी कल भी थी और आज भी है।
0: ओहो क्या बात है।
1: हमने आयातित पौधों को पानी वानी खूब दिया, लेकिन घर की तुलसी प्यासी कल भी थी और आज भी है। और एक शेर यूं है कि जिनका दर्द हमारे दिल में आज भी है और कल भी था, जिनका दर्द हमारे दिल में आज भी है और कल भी था, दिल में उनके फांस जरा सी कल भी थी और आज भी है।
0: ओहो आज भी है जी।
1: आखिरी शेर की, झूठे चोर उचक्के पागल लंपट मायावी गुंडे, झूठे चोर उचक्के पागल लंपट मायावी गुंडे, इनकी संख्या अच्छी खासी कल भी थी
0: और आज भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई, वाह क्या कह दिया, क्या कह दिया, शानदार शानदार। राहुल भाई थैंक यू सो मच। तो अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
1: जी शुक्रिया भैया। मैं एक गजल परवीन शाकिर साहिबा ने लिखी थी जो उस्मान मीर साहब ने गाई है
0: जी,
1: और भी कई सारे गजल गायकों ने गाई है। तेरी खुशबू का पता करती है मुझ पे एहसास।

0: हवा करती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। पहले के ही कुछ अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं इस गजल के। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारी सी गजल।

0: राहुल भाई आगे बढ़ते हैं और अब आपसे गुजारिश करूंगा, एक गजल और सुनाइए हमारे सुनने वालों को।
1: मैं कोशिश करता हूं। एक मतलब एक दो शेर यूं है कि
0: इरशाद
1: रफ्ता रफ्ता रफ्ता ही सही आखिर मेरे,
0: जी
1: रफ्ता रफ्ता ही सही आखिर मेरे, हो रहे हैं ऐब सब जाहिर मेरे।
0: ओहो,
1: रफ्ता रफ्ता ही सही आखिर मेरे, हो रहे हैं ऐब सब जाहिर मेरे। शेर यूं है, मेरे दुख ने एक दिन मुझसे कहा,
0: जी
1: मेरे दुख ने एक दिन मुझसे कहा, मेरा दुख भी लिख कभी शायर मेरे,
0: क्या बात है,
1: मेरा दुख भी लिख कभी शायर मेरे। कहते हैं इमरोज मेरी अमृता,
0: जी
1: कहते हैं इमरोज मेरी अमृता, अमृता कहती है कि साहिर मेरे,
0: ओहो
1: अमृता कहती है कि साहिर मेरे। शेर यू है कि कब तलक आखिर रहेगा कैद में, कब तलक आखिर रहेगा कैद में, तोड़ पिंजरा और उड़ ताईर मेरे,
0: जी
1: तोड़ पिंजरा और उड़ ताईर मेरे। आखिरी शेर, दुश्मनी का क्यों करूं अफसोस मैं,
0: जी
1: दुश्मनी का क्यों करूं अफसोस मैं, दोस्त सारे हो गए शातिर मेरे।
0: ओहो क्या बात है
1: जी,
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या बात है, दोस्त हो गए सभी शातिर मेरे।
1: जी
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल। राहुल भाई बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी गजलें हमने सुनी, आपके पसंदीदा गायकों की गजलें हमें सुनी, हमने आपसे बातचीत करी
1: जी,
0: हमारे सुनने वालों को भी आपसे बातचीत करके, आपकी बातें सुनकर, आपकी गजलें सुनकर बहुत मजा आया होगा।
1: बहुत अच्छा लगा भैया मुझे आपके माध्यम से आपके श्रोताओं तक पहुंचने के लिए, आपके ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो नई नई प्रतिभाओं को श्रोताओं से मिलवा रहे हैं। रूप आभार आपका,
0: बहुत शुक्रिया।

दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और सुन रहे कार्यक्रम खेती बाड़ी।
1: जी हां साथियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे किसान साथियों के लिए हम बहुत ही लाभदायक जानकारी लेकर आते हैं कि हमारे किसान साथी कैसे खेती कर सकते हैं और कैसे खेती करके अपना ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ श्रोताओं, हम इस कार्यक्रम में ये भी बताते हैं कि इस मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि धूप आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी जब भी खेतों में जाते हैं तो अपने सर को ढक कर रखें, तौलिए से, गमछे से या फिर किसी और चीज से, या टोपी भी आप लगा सकते हैं। खेतों में काम करते वक्त साथियों हमें ध्यान देना है कि पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है। अपने शरीर को पानी बार बार दें, यानी कि पीते रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा, तभी हम खेती का काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोताओं हम बात करने वाले हैं कि टिकाऊ खेती।
2: बिल्कुल श्रोता साथियों, कि टिकाऊ खेती आखिरकार है क्या, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि टिकाऊ खेती किसे कहते हैं, टिकाऊ खेती में किस तरीके से नए पद्धति से हमारे किसान साथी खेती कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना नई पद्धति का आ गया है कि कैसे किसान साथी नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर हमारे किसान साथी आगे बढ़ सके, उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से हम अपने किसान साथियों को नई नई पद्धति के बारे में खास तौर पर बता रहे हैं और कुछ ऐसी बातों को भी ध्यान में रखना होगा किसान साथियों को, क्योंकि अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। पानी की किल्लत को देखते हुए हमारे किसान साथी कम पानी वाली फसलों पर जा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब उसके लिए बीजों का चयन होता है, तो बीजों के चयन के लिए हमारे किसान साथी केवीके में जाकर या कृषि विभाग में जाकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ में किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM के माध्यम से जो हम कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं वो हमारे किसान साथियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण बातचीत हम लेकर आते हैं। और जैसा कि टिकाऊ खेती की अगर बात करें तो अभी हमारे किसान साथी, चूंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, तो उनको यदि पथरीला इलाका है तो छोटी छोटी जमीन भी हमारे किसान साथियों के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, पॉली हाउस एक माध्यम हो सकता है, ग्रीन हाउस जिसे कहा जाता है, उसमें नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, पौधे भी उसमें लगा सकते हैं, उसमें भी खेती कर सकते हैं। तो किस तरीके से खेती करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर आज हम एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। साथ साथ में कुछ किसान अपने जो सफल हुए हैं और वो अपने अनुभव साझा करेंगे। तो हम देर नहीं करते हैं, हम अपने किसानों के पास हमारे श्रोता साथियों को ले चलते हैं, उनके अनुभवों को हम जानते हैं, वो नई पद्धति से किस तरीके से खेती करते हैं, क्या अनुभव उनका रहा है। तो आइए हम अपने किसान साथियों की आवाज में इस उनकी कहानी को हम सुनते हैं।
3: मैं विवेक यादव, मैं एक मध्यवर्गीय सुभाष नगर किसान हूँ। भैया, अगर हम अपनी नई तकनीकों को आज हम अपने खेतों में लगाते हैं तो भैया लागत आती है, पर यह लागत एक बार की है, जिससे हम भविष्य में काफी समय तक इससे लाभ ले सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया लगाओ एक बार और काटो बार बार।
4: मैं सुंदरदास, जगदीशपुर का किसान, हमारे ख्याल से आज स्थिति को देखते हुए नई तकनीकों का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब लोग पिछड़ जाएंगे और सारा काम खराब हो जाएगा। हाँ, नई तकनीकों को अपनाना थोड़ा महंगा जरूर है।
5: मैं जवाहर नगर का एक छोटा सा किसान हूँ, मेरा नाम अभिषेक है। भैया, यह बात तो सही है कि खेती में अगर हम वैज्ञानिक तकनीक लगाएं तो इससे थोड़ा खर्चा तो आता है, पर इससे आने वाले समय में बहुत से काम हो जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल पहले पंप सेट लगाया था और मैं अभी तक उससे सिंचाई कर रहा हूँ।
6: किसान भाइयों की बात को ध्यान से सुनते हुए मुझे एक धारणा का पता चला। भाइयों कि हमारे सभी किसान भाई सोचते हैं कि भाई अगर हम उन्नतशील खेती करना चाह रहे हैं और नई नई जो तकनीकें हमें जो विशेषज्ञ बताते हैं उनको अपनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए निवेश करना बड़ा जरूरी है और निवेश भी मामूली नहीं, बड़ा निवेश है किसान भाइयों। तो इस निवेश को किसान कैसे देखे, क्या खर्चा है उसके लिए या कि एक कमाई का नया साधन। और इसी बात से एक विषय जो सामने आया है कि निवेश एक बार लाभ बार बार, यानी एक बार निवेश करने के बाद आप लाभ बार बार कैसे लें, आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन किसान भाइयों की धारणा को और मजबूती से समझते हैं और चलते हैं बातों बातों में, जो कि है एक लघु नाटिका।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
7: गामे गामे वायो

अपना हक नहीं लड़ाई से, अपना हक नहीं लड़ाई लड़वा माटे गमे गाम थी मारा भाईओ मारी बोनो मारा काका मारी काकियो ये बता सालों

0: माता की जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: हाँ दिशा में पकड़ो, उधर से पकड़ो, चलो तुम रुको रुको, मैं पहले उतरता हूँ। हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक
2: आराम से आराम से।
3: अरे घर में शादी है क्या? राम राम
1: राम राम। तुम हटो यार जरा,
2: एक दिशा में ऐसे रखो।
1: हाँ
2: क्या कह रहे हो कल्लू भैया?
3: घर मैंने कहा घर में किसी की शादी है क्या भैया?
1: शादी से तुम्हारा मतलब?
3: अरे इतना सारा सामान लेकर आए हो, शादी का ही लग रहा है।
2: शादी का? अरे कल्लू ये जो पाइप है ये सामियाना का पाइप थोड़े ना है। ऊपर से ये बताओ जो सामियाना कहीं पन्नी का लगता है क्या है?
3: ये तो बात सही कह रहे हो भैया, लेकिन है क्या ये बवाल?
1: अरे भाई कल्लू कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं क्या, हम लोग अच्छी खेती चाहते हैं, इसके लिए पाली हाउस लगा रहे हैं।
2: हाँ और तुम्हें पिछली बार की बात याद है, संगम भैया कह रहे थे कि हम लोगों को टिकाऊ खेती करनी चाहिए, और टिकाऊ खेती के लिए अगर हम पॉली हाउस में खेती करेंगे तो हमारी इनकम भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा।
3: इसके लिए पैसा तो बहुत खर्च किया दिलशान भैया।
1: हाँ थोड़ा सा खर्चा हुआ है, लेकिन अब भाई वो सब बराबर हो जाएगा, क्यों दिलशान भाई?
2: बिल्कुल भाई, आज हम पैसा लगा रहे हैं, कल पैसा फिर आएगा और परसों फिर आएगा।
3: इससे अच्छा तो आप अपने पान की दुकान खोल लेते, उससे तो रोज रोज आमदनी आती।
1: तुम भी यार कल्लू हद है।
2: भैया हम लोग हैं किसान, हम लोग खेती करेंगे तभी हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, पान और बीड़ी सुरती बेच के कुछ नहीं होने का है।
1: और वैसे भी कल्लू छोटा बिजनेस नहीं बड़ा बिजनेस करो,
2: और आज की नहीं आगे की सोचो
4: भाई। पॉली हाउस में लगाओ लागत एक बार और कमाओ बार बार।
2: संगम भैया राम राम,
4: राम राम भैया राम राम।
1: संगम भैया कैसे हैं?
4: मैं तो भैया आप ही जैसा हूँ, एकदम टकाटक।
1: संगम भैया यहाँ मैं और दिलशान भाई पाली हाउस के लिए जो सामान था ले आए हैं, आप जरा देख लीजिए कि ये सारी चीजें सही है कि नहीं, क्यों दिलशान भाई?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संगम भैया जिस दुकान पे आपने कहा था हमने सामान वहीं से लिया, इससे और दुकान से थोड़ा सस्ता ही पड़ा है।
3: संगम भैया कितना भी सस्ता पड़ा हो लेकिन है तो महंगा ही।
4: अरे कल्लू भैया आप कह तो सही रहे हो, लेकिन आज तो जरूर ये महंगा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में यही तो आपको बरकत दे के जाएगा, तब आपका जो पान का खोका है ज्यादा महंगा महसूस होगा और ये पॉली हाउस बहुत ही सस्ता लगेगा।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो संगम भैया। कल्लू भैया आज हम ये पॉली हाउस लगा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना है कि अगली बार इसको उखाड़ के बेचना पड़ेगा, एक बार ये लग गया तो सालों साल चलता है।
1: अरे दिलशान मियाँ किसे समझा रहे हो, तुम तो जाओ कल्लू अपनी पान की दुकान खोलो और हम भी तुम्हारे वहाँ आएंगे 10 साल बाद पान खाने।
3: चलो पान वान भैया छोड़ो, ये बताओ इस पॉली हाउस जो लगा रहे हो उससे क्या क्या फायदे होंगे?
4: अरे भैया पॉली हाउस में ऐसी फसलों का उत्पादन हो सकता है जो उस मौसम में बाजार में नहीं मिलती, और जो फसलें बाजार में नहीं उपलब्ध हों और वो फसलें तुम बाजार में ले जाओगे तो बताओ कितना मुनाफा होगा, यानी 40 पैसे का बैंगन 40 रुपये में मिलेगा।
3: अरे भैया ये तो मुनाफे वाली बात है, तो क्या मैं इसमें आपकी सहभागिता ले सकता हूँ?
1: हाँ हाँ क्यों नहीं दिलशान भाई,
2: क्यों नहीं? लेकिन भैया जितना खर्चा हुआ है उतने के बराबर ही खर्चा देना पड़ेगा।
3: चलो ठीक है मेरा भी एक हिस्सा जोड़ लो।
4: अरे ये हुई ना बात, तुम भी समय के साथ साथ चलने लगे हो, इसका मतलब हुआ थे बुद्धू और बन गए महात्मा बुद्ध।
5: कार्यक्रम खेती बाड़ी में एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सुन रहे हैं इस समय रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपनी बातें। अभी हम सब मिलकर सुन रहे थे एक लघु नाटकिया जिसमें हम जान रहे थे कि किस तरह से पॉली हाउस होते हैं और हमारे किसान साथी कैसे उसमें नर्सरी लगाकर कुछ फायदा ले सकते हैं। चलिए श्रोताओं अब हमारा वक्त हो चला है अगले सेगमेंट का। अगले सेगमेंट में हम जानेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट है वो नई पद्धति के बारे में हमें बता रहे हैं, तो कैसे हमारे किसान साथी उस नई पद्धति का फायदा ले सकते हैं। लेकिन श्रोताओं उससे पहले हम यहां पर सुन लेते हैं एक गीत को।

0: आदिवासी जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: सर्वप्रथम तो है कि पाली हाउस बड़े काम की चीज है और खास तौर पे जो है बेमौसमी सब्जी उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे जो महत्वपूर्ण इसका अंग होता है कि इसमें आप 6 से लेकर 8 गुना तक ज्यादा उत्पादन इससे ले सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ दूसरी भी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। जो भी आप सब्जी लेते हैं उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप बिना सीजन के आप उगाते हैं तो हमारी जनसंख्या भी देखते हुए भी है कि हम

आप तो चाहे आप अब तो जीआई पाइप्स आती हैं उसका भी आप पॉली हाउस बना सकते हो। किस तरह का बनाते हैं ज्यादा करके किसान भाई, जो हमारी हमारा प्रदेश है, नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हम लोग के लिए लाभकारी होता है। बनवाते समय इसमें एक ही बात का ध्यान रखते हैं, कम से 60 से 70% इसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बनवाते समय कुछ चीजों का और ध्यान रखेंगे, ऐसी जगह पॉली हाउस बिल्कुल आपका न हो जहाँ पे छाया आती हो, या ऐसी जगह न हो जहाँ पे पता लगा बरसात के दिनों में पानी भर गया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका फेंस वगैरह से थोड़ा घिरा हो तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जानवर उसके पास कम से कम जा सके। पानी का स्रोत उसके आसपास होना चाहिए और बाजार से भी नजदीक हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये सब चीजें हैं। और एक महत्वपूर्ण है कि पॉली हाउस बना लेते हैं तो चूंकि हम ठंडी के दिनों में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसान भाई पॉली हाउस अगर बना, ऐसा नहीं कि जब भी जो ये आता है और पॉली हाउस खोला और अंदर घुमाने के लिए चले गया, पॉली हाउस इसके लिए नहीं होता है। पॉली हाउस को कम से कम खोला जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। बनाते समय एक और ध्यान रखिएगा कि दरवाजे जो हैं आपके बिल्कुल सामने की तरफ न खुले, थोड़ा सा घूम के आप दरवाजा बनाइए। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट अंदर जाने जा नहीं पाते हैं, तो ये हमें काफी उससे लाभ रहता है। और जिन किसान भाइयों के जिसे पॉली हाउस बनवा चुके हैं, 2-3 साल हो चुके हैं, तो बरसात बीतने के बाद एक बार उसकी जो है पॉली सीट जो ऊपर होती है सर्फ से उसकी धुलाई जरूर कर दें, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अब उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन इसलिए कम होता है कि बरसात के बाद पन्नी हमारी थोड़ी गंदी हो जाती है, थोड़ी काई जैसी जमने लगती है, तो आप धुलाई कर दोगे तो उत्पादन जो है एक बार फिर से आपको दोबारा अच्छे प्रकार से मिलने लगेगा। और एक पॉली हाउस बनाते हैं तो आप पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाएं, कई सारे पॉली हाउस आपके लगे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा में बनने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो भी किसान भाई पॉली हाउस बनवाना चाहते हैं बिना तकनीकी जानकारी लिए हुए न बनवाएं तो बेहतर रहता है। एक बार आप जानकारी जरूर लें, क्योंकि आपके उपयोगिता क्या है, कौन सी सब्जी उगाना चाहते हैं, ये सब चीजों का, जैसे उसमें मिस्ट सिस्टम लगता है, ड्रिप सिस्टम लगता है, तो हम सारी चीजों की जानकारी देते हैं कि आपकी आवश्यकता क्या है और कितना बड़ा पॉली हाउस आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे कम से कम आपका होता है कि 100 वर्ग मीटर का तो होना ही चाहिए, तो 100 से लेकर 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस अच्छा माना जाता है। इन सब चीजों को बनाए और लगाने का होता है तो बीमारियों के लिए भी अच्छा। तो सावधानी के लिए भी आपको जो दवाएं हैं और जो डोज है बाहर से थोड़ा अलग होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो आप किसी वैज्ञानिक से या संस्था से जुड़े रहें। बस ये है कि नहीं कि आप सब्जी का, जैसे खेती से लगातार आय बढ़ाने का ये है कि खेत को हम कभी खाली ना छोड़ा जाए, और पहले से सोच के डाइवर्सिफिकेशन की एक बात होती है कि ज्यादा तरह की फसलों का चुनाव किया जाए। बहुत सारी जैसे बीच में छोटा छोटा जैसे आपका गैप आता है, जैसे हमारे यहाँ भी लोबिया की बात होती है कि आपका गेहूं कटेगा और उसमें आप लोबिया थोड़े समय में 60 दिन में लगा के ज्यादा से ज्यादा जो है धान कटने के बाद आप लगा के ले सकते हैं, गेहूं और उसके लगने के पहले जो है आप उससे ले सकते हैं। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं कि जो आप थोड़े थोड़े समय में, जैसे मूली एक ऐसी सब्जी है आप इसको साल भर में 8 बार लगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि दो फसल के बीच में जो है हमारा थोड़ा गैप हो रहा है 25 दिन 40 दिन, तो आप ऐसी प्रजाति का चुनाव करिए, लगाइए और आमदनी ले लीजिए। बिल्कुल भी हमें जो अगर हम लगातार लगे रहें और सोच बनाए रखें, खासतौर पर उन सब्जियों को भी जैसे लगता है कि साल भर आमदनी की बात है, तो कुछ किसान भाइयों को पॉली हाउस वगैरह भी बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना मौसम में भी जो है सब्जी हम लगा के आप जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। और लगाने से सबसे महत्वपूर्ण है किसान भाई जैसे है कि दो चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस सब्जी को लगाने जा रहे हो उसमें लागत कितनी आएगी और उसका बाजार में उसकी मांग है कि नहीं है। तो जहां भी आप लगाने चाहो, ये नहीं कि हमने कह दिया कि कोई भी सब्जी आप साल भर उगाते रहिए, इन दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप सब्जी उत्पादन शुरू करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा बहुत कोई नई सब्जी आप जैसे एक्जोटिक आप लेट्यूस लगाना चाहते हैं, सेल्ली लगाना चाहते हैं, इस तरह की सब्जियों की अगर खेती करना चाहते हैं तो एक बार बात जरूर कर लीजिए आप, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जैसे हमारे दिल्ली है, वहां आपको मूल्य बहुत ज्यादा उसका मिलेगा। तो इस तरह की चीजों में लगने से पहले एक बार बाजार को देख ले, वैज्ञानिक सलाह जरूर ले ले। और मुझे लगता है कि ऐसी सब्जी है जैसे टमाटर तो पूरे साल भर, और किसान भाई देख रहे हैं कि हर एक सब्जी पूरे साल भर मिल रही है, मिल कहां से रही, जब कोई किसान उगा रहा तभी तो मिल रही है आपको, तो दूसरा उगा सकता है हमारे देश के दूसरे भाग में उगा सकता है, तो हम क्यों नहीं उगा सकते। तो पूरा है कि सब्जी से अगर व्यवसाय में लगा जाए तो हम पूरे साल भर जो है उसमें लगे रहेंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा हमें आधुनिकरण करना पड़ेगा कि हमें जो है पॉली हाउस है, मल्च है, ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, कुछ नई चीजें जो आई हैं, नई प्रजातियां हैं, इनका हम समावेश करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि साल भर जो है

0: हमारा जो परिवार, हम खुद भी अच्छी सब्जी खाएंगे, दूसरे को भी अच्छा खिलाएंगे। तो ये जैसा कि है कि भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो सब मिल के चले तो सभी अच्छा ही अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, अभी आपने सुना विषय विशेषज्ञ को, तो काफी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी हमारे किसान साथियों के मन में जो भी सवाल चल रहे थे इस खेती को लेकर, और साथ में नई पद्धति को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे आसपास का क्लाइमेट एकदम से खराब होता चला जा रहा है, पानी की कमी हमें देखने में आ रही है। तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन से वे बीज हैं जिनका चयन करके हम अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा एक मिल सकता है। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं और आइए इसी कार्यक्रम में हमारे साथ पशुपालन की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि पशुपालन भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो इस मौसम में हम कैसे पशुपालन पर ध्यान दे सकते हैं, क्या चीजें उनके लिए सही होती हैं, क्या हमें करना चाहिए पशुधन के साथ, तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
3: खेती के साथ साथ किसान पशुपालन कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं। कम स्थान और कम व्यय पर छोटे पशुपालकों में सबसे ज्यादा बकरी पालन का प्रचलन है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती और इनकी संख्या में आसानी से इजाफा भी होता रहता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। ये संकेत पशुपालन में होने वाले मुनाफे की ओर इशारा करते हैं। बकरी पालन से और अधिक कमाई कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे, इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक हो जाती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरा से कराएं। इसके अलावा इनके आहार पर भी खास ध्यान रखें। गाभिन बकरियों को अंतिम 1.5 महीने में चराने के अलावा कम से कम 200 ग्राम दाना का मिश्रण अवश्य दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बकरियों के आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें और एक घर में एक साथ 20 बकरियों से ज्यादा ना रखें। बच्चा जन्म के समय बकरियों को साफ जगह पर रखें। जन्म के बाद नाभि को 3 इंच नीचे से ब्लेड की सहायता से काट दें, साथ ही टिंचर आयोडीन या वोकाडिन दवा लगाएं। बच्चों को रोगों से बचाने के लिए जरूरी टीकाकरण कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसलिए बकरियों के पोषण के लिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दें। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में भी वृद्धि हो सकेगी। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का भी होना है, और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है और पशुपालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। हो रहे बदलाव के साथ साथ युवा वर्ग की सोच भी बदल रही है। युवा अब हर वो कदम उठा रहे हैं जो प्रकृति और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यही वजह है कि युवा अपनी सोच को नया रूप देकर अपने बनाए उत्पादों को बाजार में ला रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही युवा उद्यमियों से मिलवाएंगे जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक पहल कर रहे हैं। हरजोत की रुचि घर के बने उत्पादों में थी। छोटे रूप में वो घर में कुकीज और अन्य उत्पाद बनाया करती थी। अपने इस शौक को व्यवसायिक रूप देने के लिए उन्होंने PAU से प्रशिक्षण लिया। वो बताती है कि पहले उनके 20 से 100 ग्राहक ही थे, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मार्केटिंग के तरीके भी सिखाए गए। इन तरीकों से हरजोत को अपने उत्पाद को विस्तार देने में मदद मिली। आज हरजोत के करीब 1000 ग्राहक हैं जो उनके उत्पाद ले रहे हैं। वो बताती हैं कि PAU से उन्हें करीब 16 लाख की ग्रांट भी मिली, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में काफी सहायता मिली। क्या है उनकी आगे की रणनीति, जानते हैं उन्हीं से।
4: मैंने पहले अपने प्रोडक्ट्स घर से बनाने शुरू किए। घर से मैंने अपनी डॉटर के लिए स्टार्ट किया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट से ले रहे हैं, ये केमिकल और फुल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो मेरे को लगा कि आजकल जो नीड है वो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स की है। तो उसके लिए मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ली। उसके बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे RKVY रफ्तार प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर में है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्ट होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट्स थे, जैसे मैं बना रही थी, तो जैसे मेरे 20 या 100 कस्टमर्स थे, इन्होंने यहाँ से मेरे को पैकेजिंग का कैसे मार्केटिंग करनी है सब कुछ बताया। तो उसी को मैंने फिर वही मेरी प्रोडक्शन भी बढ़ गई। मेरे 1000 से ऊपर अब कस्टमर्स हैं, जिसके हिसाब से अब मेरे को गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिली है। तो उसके साथ साथ मैंने अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो कुकीज़ हैं, मिलेट कुकीज़ हैं, ग्लूटेन एलर्जी वाले लोगों के लिए हैं, वीगन्स के लिए हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। अब हम अपनी आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो सारी प्रोडक्शन है, ये हम खाली ये नहीं कि मैं अपने तक सीमित रखना चाहती हूँ। अगर मैं काम शुरू कर रही हूँ तो कम से कम मेरे अंडर अब 20 से 25 जिन लोगों को जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती या और जिनके स्किल्स अभी इतने नहीं हुए, उनको दे रही हूँ। क्योंकि मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन, जो कमिंग जनरेशन है, वो आ रही है, वो भी अपने जो उसका पैशन है उसको प्रोफेशन बनाए, ताकि हम किसी पे डिपेंड ना होए।
3: वहीं PAU के छात्र परमप्रीत का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही खुद का व्यवसाय शुरू किया। परमप्रीत का उद्देश्य लोगों को हेल्दी सलाद देने का है। इसके लिए उन्होंने एक किट तैयार की जिसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। परमप्रीत मानते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। इस वजह से वो संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन से दूर होते जा रहे हैं। इसी कमी को भरने के लिए परमप्रीत ने ये कदम उठाया है। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया, साथ ही PAU ने उन्हें वित्तीय सहायता भी दी।
5: मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ मैंने एक स्टार्टअप, मेरे एक पार्टनर है अनुपमा, वो उनके साथ मिलकर हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो है माइक्रोग्रीन्स और एक्जॉटिक वेजिटेबल्स का। तो हमने अपनी जो शिक्षा है उसके साथ साथ ही स्टार्ट किया था, लेकिन अब हम इसे कंपनी के रूप में अभी एक स्टार्टअप रजिस्टर करा दिया है। जो हमारा स्टार्टअप है वो इनक्यूबेट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर, जहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना है। सारा का सारा हमें हेल्प करते हैं डॉक्टर रियाड सर, जो हमारे पाबी प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर हमें गवर्नमेंट फंडिंग भी मिली हुई है, उसके अंडर हमें 12 लाख की जो गवर्नमेंट फंडिंग मिली हुई है, जिसमें हम इंडोर फार्मिंग का प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है। इंडोर फार्मिंग हम क्या कर रहे हैं, जैसे माइक्रोग्रीन्स का हमारा है। माइक्रोग्रीन्स क्या होते हैं कि जो छोटे फॉर्म के कह सकते हो 10 दिन की ग्रोथ है पौधे की बीज से उगने तक, वो उसे माइक्रोग्रीन कहते हैं। तो वो काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और उसके साथ साथ हमारे काफी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जैसे केल हो गया या स्विस चार्ड हो गया या मैस्को ब्रोकली हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स की एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो काफी न्यूट्रिशियस होती हैं लेकिन हमारी मार्केट में नहीं मिलती हैं।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
6: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
2: जी हां साथियों, अभी आप सुन रहे थे सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से साथियों हम जब खेतों में चावल उगाते हैं और उसको सीधा ही हम मंडी पर बेच देते हैं जिससे हमें बहुत ही कम मुनाफा और सीमित मुनाफा मिलता है, लेकिन अगर हम उन्हीं चावलों का कोई और प्रोडक्ट बनाकर तैयार करें, उनकी पैकिंग कर अगर बेचें तो उससे दो गुना फायदा हम कमा सकते हैं। बस जरूरत है तो हमें समझने की और एक प्लान करने की कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। अगर आपके खेतों में दालें बहुत ज्यादा होती हैं, अगर आप किसी और सब्जी की बहुत ज्यादा पैदावारी करते हैं, मान लीजिए आपका आलू बहुत ज्यादा होता है, तो आप आलू ऐसे ही बेचने की बजाय आप उनके चिप्स बनाकर भी बेच सकते हैं बाजारों में, जो आपकी अच्छे दामों में चली जाएगी, जिसका अच्छा खासा मुनाफा हमारे किसान साथियों को सीधे पहुंच सकता है। तो साथियों, ज्यादा बात ना करते हुए क्योंकि हमारा समय हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो आज का ये कार्यक्रम खेती बाड़ी साथियों आप सभी को कैसा लगा हमें जरूर फोन के माध्यम से बताना ना भूलेगा और साथ में हमें सुझाव भी दीजिएगा, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम आपके अनुसार यानी आपके लिए फायदेमंद है तब भी हमें बताइएगा और फायदेमंद अगर नहीं है तब भी हमें जरूर जरूर जरूर बताइएगा, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है
6: 9425416303। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और साथ साथ में यदि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो हमें जरूर कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ साथ में विषय विशेषक की सलाह भी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, तो हम अपने विषय विशेषक से सलाह लेकर आपके सवालों का जवाब हम कार्यक्रम के माध्यम से दिलाएंगे। और हम साथियों कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं वो छोटी सी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचनी चाहिए जो उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। खासतौर पर अगर देखा जाए कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे वर्षा जी ने बताया था कि हम सीधे जैसे चावल को बोते हैं और उसको बेच देते हैं तो डायरेक्ट ना बेचकर, या फिर आलू यहाँ पर जो भी सीजनेबल चीजें रहती हैं जो उगाई जाती हैं खासतौर पर झाबुआ में, तो उनको सीधा ना बेचकर उनको पैकिंग कर यदि संगठन के माध्यम से अगर हम उसको बेचा जाए तो आपको दाम भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी आपको अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझनी होगी, सोचनी होगी और अपने जीवन में अपनानी होगी। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो आपके रेडियो साथी मनीष
2: और आपके रेडियो साथी वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। फिर होगी हमारी और आपकी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को, सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथियों कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कब बारिश हो, और बारिश होने के बाद वो किसान साथी हमारे अगली फसल की तैयारी करेंगे। लेकिन साथियों, हमारे किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, इससे पहले कुछ हमें अपनी जानकारी जुटाना चाहिए कि हमें कौन बीज अगली फसल में हमें बोना है। साथ साथ में हमें मेड़बंदान पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है। ऐसे में समतलीकरण अपनी जमीन को कर लेना चाहिए, अपनी खेती को कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक पानी उस खेत में नहीं रुकेगा तब तक नमी नहीं बनेगी और साथ साथ में पैदावार भी आपकी कम होगी। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जिस पथरीला चूंकि इलाका है, यहाँ पर पानी कितने सारे देते हैं तब पानी रुकता ही नहीं उसमें, तो कैसे आपने जो ढलान वाले खेत हैं, उबड़ खाबड़ वाले खेत हैं, उसको किस तरीके से उपजाऊ हम बना सकते हैं, समतलीकरण कर सकते हैं, चारों ओर मेड़बंदान कर सकते हैं, ये अभी खाली समय में हमारे किसान साथी काम कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो विशेष तौर पर उनको ध्यान देने वाली हैं। और यदि आपको लगता है कि हमें अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी जो झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं या फिर KBK बना हुआ है, वहां पर जाकर वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि हम कौन से बीज की तैयारी अभी इसे कर लें, उपचार के लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम खेती को एक आधुनिक पद्धति से अपनी खेती को करना चाहिए, कैसे वैज्ञानिक ढंग से हमें खेती करना चाहिए जिससे हमारी लागत कम लगे और उत्पादन हमारा अच्छा हो। तो हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों बताते रहते हैं और हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे फसल जो रहती है उस पे जो हम जो उत्पादन करते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के जो फसल हम उत्पादन करके हम जो बेचते हैं, उसमें किस तरीके से GI टैग लगाया जाता है, इस पर विस्तार से आज जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। कौन सा कानून है, कैसे लगता है और इससे हमारे किसान साथियों को किस तरीके से लाभ हो सकता है, सारी जानकारी इस चर्चा में हम आप सुनेंगे। तो देर नहीं करते हैं, आपको सीधा इस चर्चा में ले चलते हैं और उनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से GI टैगिंग हमारे भारत में की जाती है, कौन कौन से फसलों पर GI टैगिंग की जाती है और कैसे इसके GI टैगिंग का हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं। तो आइए इस चर्चा को सुनते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो अपनी बातें।
2: GI टैग या पहचान उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक में वहाँ की स्थानीय खूबियाँ मौजूद होती हैं। दरअसल GI टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता और गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। GI टैग के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में नयापन लाने वाले लोगों को इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि उनके उत्पाद की नकल कोई और व्यक्ति या संस्थान ना करे। देश में इसके लिए बकायदा कानून है। ये कानून आश्वासन धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। यानी अगर कोई मलिहाबाद के नाम से बेचा जा रहा आम अगर मलिहाबादी नहीं है तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई कर सकते हैं। और इस कानून के अंतर्गत किसी उत्पाद का पंजीकरण भौगोलिक उपदर्शन या संकेत कहलाता है। खेती के मामले में इसका फायदा किसानों को मिलता है। उपभोक्ता मशहूर जगह की असली कृषि उपज को ज्यादा भाव देने में गुरेज भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ की माटी का स्वाद, वहाँ की जलवायु की विशेषता और स्वाद की विशिष्टता इसमें समाहित होती है। इतना ही नहीं, ये टैग स्थानीय फसलों के संरक्षण का भी रास्ता साफ करता है। जीआई टैग मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, प्राकृतिक उत्पादों, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान के लिए दिया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत ने जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में उत्पादों का पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को मंजूरी दी। ये अधिनियम 2003 से अमल में आया है। भारत में साल 2004-05 में दार्जिलिंग चाय से शुरू हुआ जीआई टैग का सफर करीब 370 उत्पादों तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि 370 में से 130 उत्पाद कृषि और खाद्य क्षेत्र के हैं, जिन्हें जीआई टैग मिला है। अगर राज्यवार बात करें तो असम की तेजपुरी लीची, जोहार चावल, असम कार्बी एंगलोंग अदरक, बिहार का कतरनी चावल, भागलपुरी जरदालू, मगही पान और शाही लीची को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ के जीरा फूल, गुजरात के गिर केसर आम, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय व हिमाचली काला जीरा और राजस्थान की बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग वाले उत्पादों से दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित हो रही है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग ने तब से और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है, जब से सरकार का ध्यान वोकल फॉर लोकल की ओर स्थानांतरित हुआ है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है।
3: तो अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट देखी जीआई टैगिंग यानी कि भौगोलिक पहचान के बारे में, थोड़ा बहुत तो जान लिया। तो फिर आइए इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहेंगे डॉक्टर बजाज से यहाँ पर। जीआई टैगिंग की जब हम बात करते हैं, भौगोलिक पहचान की हम बात करते हैं, तो ये है क्या और इसकी जरूरत क्यों है, इसके बारे में आप सबसे पहले जानकारी दें।
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा आदिति आपने कि सबसे पहले जीआई यानी भौगोलिक पहचान की बात करते हैं। और शुरू में आपने कहा ही था कि असम की चाय और बनारस की साड़ियां, ये सब चीजें इतनी मशहूर होती हैं, जब भी कोई जाता है तो वो सोचता है कि इसको मैं जरूर खरीदूंगा, या अगर खाने पीने की चीज है तो इसका जरूर खाकर या उसका टेस्ट करके पता करूंगा कि ऐसा खास क्या है उसमें, और वाकई खास होता है। तो जीआई एक प्रोडक्ट, ये जो एक टैगिंग है, ये उरुग्वे राउंड के बाद जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ था तब आर्टिकल 22 और 24 के तहत, तब ये कहा गया कि भाई हर भौगोलिक क्षेत्र की एक विशेष पहचान है, उस उत्पाद से जुड़ी हुई उसकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसकी एक खास विशेषता जुड़ी हुई है, तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी हमें उस पहचान को जो है वो बनाए रखना है कि हाँ ये जो उत्पाद है ये इस क्षेत्र का है और विशेष है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। तो ये एक WTO के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हुआ। अब उदाहरण जैसे आपने दिए, हमारे यहां अभी 415 के करीब जीआई टैग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हमारा मलियाबादी आम है, केसर आम है, बैंगन पल्ली आम है, अल्फेंसो आम है, चाय है, और इस तरह शाही लीची है बिहार की, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 415 के लगभग आज की डेट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से 140 जो है वो कृषि उत्पाद है।
3: जी, तो 140 कृषि उत्पाद हम कह सकते हैं कि इनकी जीआई टैगिंग हो चुकी है। तो ऐसे में राजेंद्र कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, ये जीआई टैगिंग करता कौन है, इसके बारे में भी तो हमारे किसानों को पता होना चाहिए।
5: ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री
3: जी,
5: ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की ब्रांच है
3: जी,
5: और वहां पर एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अंडर द एक्ट, अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स या बॉडी जो रिकग्नाइज बाय लॉ है वो अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि हम एप्लीकेशन लेके चले गए और रजिस्ट्रार जो है उसको रजिस्टर कर देगा, उसके लिए अंडर द एक्ट काफी रिगरस रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी बॉडी जीआई रजिस्ट्री के सामने जाएगी वो एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, वो नॉन ट्रेडिंग न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, और दूसरी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए, यानी कि एक एसोसिएशन है जिसके कुछ मेंबर्स रिकग्नाइज करते हैं उसको और कुछ नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। इंस्पेक्शन मैकेनिज्म सर्टिफाई करेगा कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, एट्रीब्यूटेबल टू दैट रीजन है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट्स जो लुक अलाइक होते हैं लेकिन वो उस रीजन से आते नहीं है, तो उसके लिए इंस्पेक्शन बॉडी जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जरूरी है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अब जब हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की बात करते हैं तो हम पब्लिक राइट्स की बात करते हैं, वो राइट्स जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जैसे हम कोई ट्रेडमार्क या प्राइवेट राइट्स की बात करते हैं वो प्राइवेट ट्रेडर्स की होती हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो कम्युनिटी को दिए जाते हैं और ये जो बॉडीज होती हैं ये कस्टोडियंस होती हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फाइल होने के बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और अंडर द एक्ट एक टेक्निकल कमिटी है, उसका प्रोविजन है, जो उसको एनालाइज करती है, जो उसको देखती है कि ये जो जीआई प्रोडक्ट है वर्दी ऑफ प्रोटेक्शन है या नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो वाकई में ऑथेंटिक है या नहीं। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर एप्लीकेशन एडवर्टाइज होती है, 4 महीने का टाइम दिया जाता है, कोई भी एग्रीड पर्सन वहां पर अपोज कर सकता है और उसके बाद फिर अगर कोई ऑपोजिशन नहीं होती है तो वो रजिस्टर हो जाता है, वो जीआई रजिस्टर हो जाता है। अगर नहीं होगा तो ऑपोजिशन जो है वो चलती है। तो इस तरह से ये जीआई प्रोसेस कंप्लीट होता है।
3: जी, तो पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है। इन बातों को जरूर ध्यान में यहाँ पर रखने की जरूरत हो जाती है। तो अब मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, धान हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है और उसकी बासमती की हम बात करें तो पहचान है, हमारे देश से बहुत ही अच्छे स्तर पर निर्यात भी होता है। तो ऐसे में बासमती के लिहाज से जीआई टैगिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे किसान और इसकी ओर बढ़ना चाहे तो?
6: देखिए अदिति, धान जैसा आपने भी कहा और पूरे विश्व में ये जानकारी है कि धान भारत के लिए विशेष तौर पर बासमती धान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व तो और बढ़ जाता है क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके लिए हमारे किसान जो हैं वो विशेष तौर पर इसके इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन चूंकि धान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो उसकी उपज से लेकर और उसके निर्यात तक उसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं। अब धान के लिए भारत सरकार ने विशेष प्रयास किए, अपीडा को इसका अधिकार दिया कि वो बासमती को जीआई टैगिंग करे और इसी परिणाम स्वरूप 2016 में हमें बासमती धान, बासमती चावल का जीआई टैग, जो जैसा अभी राजेंद्र जी ने बताया, चेन्नई जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका अधिकार अपीडा को मिला। उसके बाद से अब तक पूरे जोर शोर से अपीडा इस प्रयास में कार्यरत है, इस प्रयासरत है कि हम कैसे ये जीआई टैगिंग को हम भारत से निकलकर बाहर, जहां जहां हमारा, हम करीब करीब 170 देशों में बासमती एक्सपोर्ट करते हैं, और उन सभी देशों में जाएं और अपने इस जीआई टैग को वहां भी रजिस्टर करें जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा उस बात का फायदा मिले, उसका लाभ मिले, क्योंकि जितना हम निर्यात करेंगे उतना ही हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा।
3: बिल्कुल। तो जीआई टैगिंग के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह का बदलाव आपने एक्सपोर्ट में देखा है, निर्यात में किस तरह का बदलाव आया है जब से जीआई टैगिंग हुई है?
6: देखिए, जीआई टैगिंग से एक बहुत बड़ा लाभ जो उस उत्पादक, उत्पाद का जो मालिक है उसको मिलता है। जीआई टैग का, जैसे कि अभी बजाज साहब ने भी बताया, जीआई टैग अपने आप में एक विशेष उत्पाद है, तभी उसको जीआई टैग मिलेगा। और जब उत्पाद विशेष है तो स्वाभाविक है उसका मूल्य भी विशेष मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कारण है कि बासमती के उत्पाद से हम बहुत लाभ, पूरा देश और हमारे देश के पूरे किसान इस बात का लाभ उठाते हैं और पूरे संसार में हम लोगों को बासमती खिलाते हैं। इसके लिए श्रेय हमारे किसानों को जाता है।
3: बिल्कुल, इसका पूरा श्रेय जो है हमारे किसानों को जाता है और हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी रहा है और हमारे किसानों का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सहयोग है। बढ़ना चाहेंगे आगे डॉक्टर बजाज, आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे। आपने बताया कि 140 के करीब कृषि उत्पाद है जिनको जीआई टैगिंग मिल चुकी है, लेकिन अगर हमारे किसान या फिर कहें कि और संगठन वगैरह अलग अलग उपज की जीआई टैगिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कहां आवेदन करना होगा, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी?
4: बहुत से ऐसे उत्पाद हैं, जैसे अभी हाँ। कहा कि केवल 140 ऐसे उत्पाद हैं जो कि अभी जीआई रजिस्टर हुए हैं
7: जी।
4: और हमारे तो हिंदुस्तान में बहुत सी जो उत्पाद हैं जो कि विशेषता रखते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं भारत की अतुल्य, भारत की अमूल्य निधि ये कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठा लिए हुए हैं, तो उनको रजिस्टर कराने के लिए जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बासमती चावल है वो हर उस किसान का हकदार है जो बासमती उगाता है, तो इसीलिए जो उत्पाद है उसको एक कोई एजेंसी जो है, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या गैर सरकारी संस्था हो जो कि सच में हकदार है उसका कस्टोडियन बनने की, उसको लेकर वो रजिस्ट्री में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं और उसका फिर पूरा प्रोसेस है रजिस्टर कराने के लिए, जैसा भी राजेंद्र जी ने बताया था
7: जी।
4: कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए और उसके बाद कस्टोडियन बनना भी आसान नहीं है। मैं अगर एक उसका जीआई का कस्टोडियन बन गया तो उसकी पहरेदारी भी करनी है मेरे को, जैसे हम बासमती की पहरेदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं दुनिया में कोई जो है वो बासमती ना कहलाए, हम कहते हैं जैसे ट्रेडमार्क का प्रोटेक्शन होता है ना कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई दूसरा ना इस्तेमाल कर ले, इसी तरह जब एक जीआई रजिस्टर हो जाता है तो उसका एक पहरेदारी भी करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, भाई दूसरे को तुम नाजायज हम उसका बगैर हमारी मर्जी के हम उसे इस्तेमाल नहीं करने देंगे क्योंकि ये एक विशेष अधिकार है। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जिसका वो उत्पाद है उसको हम प्रीमियम मिलता है, दूसरे उत्पाद में उसको पता होता है कि ये जो भी खरीद रहा है उसको मालूम है कि ये एक विशेष चीज है जो मैं खरीद रहा हूँ,

0: और इससे मुझे जो है एक एक अच्छा जो है वो और कहीं नहीं मिलता दुनिया के कोने में, एक यहीं पर ये चीज मिलती है और उसका एक प्रीमियम भी उनको दिया जाता है। तो इसीलिए इसका जो है वो रजिस्टर एक संस्था कर सकती है, चाहे सरकारी या गैर सरकारी हो, और फिर उसका कस्टोडियन भी बनना पड़ता है।
1: बिल्कुल, तो आपने कहा कि एक संस्था यहाँ पर जीआई टैगिंग के लिए आवेदन आगे बढ़ा सकती है, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या फायदा लाता है ये जीआई टैगिंग, किस तरह से फायदेमंद साबित होता है? राजेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप, हमारे किसानों के लिए जीआई टैगिंग कितना फायदेमंद है?
2: मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा।
1: बिल्कुल,
2: दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी का प्रोटेक्शन 1986 से फॉर्मल ढंग से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है ये 2003 में आया, 15 सितंबर 2003 में। उससे पहले भी इंडिया में स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन रही और दार्जिलिंग टी जो है एक सर्टिफिकेशन मार्क है। तो 2018 में वर्ल्ड बैंक और एफएओ ने एक स्टडी स्पॉन्सर की थी, जिसमें 6 ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस वर्ल्ड वाइड से सिलेक्ट किए गए थे, उसमें दार्जिलिंग टी भी थी। और उस स्टडी का फोकस था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्शन से क्या फायदा होता है। तो उसमें दार्जिलिंग टी के बारे में ये बताया गया कि जब से दार्जिलिंग टी की प्रोटेक्शन स्टार्ट हुई है तो उसका बेनिफिट जो वहां पे स्टेट्स हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि दार्जिलिंग टी सिर्फ 87 टी गार्डन्स में ही प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि सारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 87 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे दार्जिलिंग टी होती है और वहां पर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वो विमेन है। तो उनका एम्पावरमेंट जब जीआई प्रोटेक्शन से होता है तो उनके लिए स्कूल्स, हर टी गार्डन ओनर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं वो गार्डन में देता है। तो उस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि दार्जिलिंग टी की वैल्यू टुडे इन कंपैरिजन टू जो ऑर्डिनरी टी है वो इतनी ज्यादा है जीआई प्रोटेक्शन की वजह से। और दार्जिलिंग टी वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्टेड है, उसको जो है यूरोपियन कमीशन ने भी जीआई टैग दिया था और वो जीआई टैग मिलने के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स ऑफ दार्जिलिंग टी बढ़ गए हैं। और जैसे ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उसका जो बेनिफिट जो है ग्रास रूट्स पर जो वर्कर्स हैं जो वहां पे काम करते हैं उन पे होता है। ऐसा ही बासमती राइस पे भी होगा। इनफैक्ट बासमती राइस का प्रोटेक्शन भी जो है उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। और अब जो है बासमती राइस जो है वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है, जैसे डॉक्टर शर्मा जी ने बताया, और उसका प्रोटेक्शन भी उसी लेवल पे चल रहा है जो दार्जिलिंग टी का है।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर फायदे तो अनेक हैं अगर हम जीआई टैगिंग करते हैं। रुक करना चाहेंगे अब डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि अब यहाँ पर कवायदे चल रहे हैं, कोशिशें चल रहे हैं कि अलग अलग देशों में भी जीआई टैगिंग हो सके हमारे बासमती चावल की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जीआई टैगिंग किस तरह से काम करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए अदिति, जैसा कि हमारे घरेलू सिस्टम में एक जीआई रजिस्ट्रार है, उसको हर किसी कोई भी प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का एक तरीका है
1: जी।
3: इसी तरीके से अगर हम विदेशों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां भी लगभग वैसे ही तरीके सामने आते हैं हमारे। और अगर हम वहां अपने जीआई टैग प्रोडक्ट को अगर वहां नहीं कराते हैं रजिस्टर, तो हो सकता है वहां कोई हमारे चीज के नाम को का दुरुपयोग करके वहां वो बेचता रहे। इसलिए यदि हमें अपने जीआई प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभाल कर रखना है, तो ये जरूरी है कि हम अपने उस उत्पाद को जहां भी हमारा मार्केट है, हमारा जो मुख्य मार्केट है, उस मार्केट के उन देशों में जाएं और अपने उस उत्पाद को वहां भी रजिस्टर करें। इसी कड़ी में अपीडा ने एक बड़ी पहल की बासमती के लिए, क्योंकि बासमती हमारे लिए बहुत बड़ा उत्पाद है
1: जी।
3: अगर मैं दो दशक की बात करूं, 2002-03 के लगभग बासमती का जो एक्सपोर्ट था वो करीब करीब 7 मिलियन के करीब था, आज वो बढ़कर करीब 45-46 मिलियन टन हो गया। तो इस बड़े उत्पाद को, जिसका कि पूरा का पूरा लाभ और श्रेय हमारे किसानों को जाता है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसलिए हम विदेशों में जो हमारे ग्राहक जो देश है, उन सभी देशों में प्रयासरत हैं कि हम बासमती को जैसा हमने भारत में रजिस्टर कराया एक जीआई प्रोडक्ट, उसी तरीके से हम विदेशों में भी जाएं और अपने इस बासमती को एक जीआई टैग के तहत है तो वहां भी रजिस्टर कराएं। और इस कड़ी में हम करीब करीब 20 के करीब देशों में हम हमारी एप्लीकेशन जो है हमारे प्रार्थना पत्र वहां चले हुए हैं, और इस कड़ी में करीब करीब 8 देशों में हम ऑलरेडी या तो GI ले चुके हैं या बासमती का हमारा एक लोगो है या तो हमने लोगो को रजिस्टर कराया है। तो ये रजिस्टर कराने से क्या होगा कि हमारा उस देश में भी हमारा बासमती प्रोटेक्ट रहेगा, कोई और उसकी नकल नहीं कर सकता, उस नाम को मिसयूज नहीं कर सकता, और हमारे जो किसान है, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ जो बासमती है वो धड़ल्ले से वहां बिकेगा और उसका पूरा लाभ उनको मिलेगा।
1: हमारे किसानों ने जो कड़ी मेहनत से बासमती यहां पर तैयार किया है उसकी पहचान बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कोई भी उसका दुरुपयोग, उसके नाम का दुरुपयोग यहां पर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जब किसी भी कृषि उत्पाद को यहां पर GI टैगिंग मिलती है तो ऐसे में जो आसपास के क्षेत्र के किसान हैं या फिर उसी क्षेत्र के हम किसानों की बात करें तो उन्हें किस तरह से फायदा मिलता है इसका?
0: सभी को फायदा मिलता है
1: जी।
0: जब GI टैगिंग हो जाता है तो जैसे ये कहा कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है
1: जी।
0: अब बासमती GI टैग हुआ तो जहां जहां बासमती उगाया जाता है वो उसका सबको लाभ मिल रहा है, ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का लाभ रह गया। जो अपने उस क्षेत्र को जो कि आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं उस आइडेंटिफाइड क्षेत्र से अगर वो अपना उत्पाद लेकर आता है तो वो उसका वही उत्पाद है और उसको वो उसका जो प्रीमियम है वो क्लेम कर सकते हैं। खाली बासमती की हम बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत से, जैसा मैंने कहा अभी दार्जिलिंग चाय की बात करी, आम है, हमारे अंगूर है, शाही लीची है, और भी बहुत से ऐसे उत्पाद और प्रोसेस फूड हैं जैसे रसगुल्ला है, बहुत से ऐसे खास जो उत्पाद हैं हर क्षेत्र के जुड़े हुए, तो उनके जो उत्पाद हैं जो जो उन उत्पादों को उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं सदियों से उसका उत्पादन कर रहे हैं उनको लाभ मिलता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बेचने में आसानी है क्योंकि खरीदार को पता है कि ये विशेष है, मैं जाता हूं वहां जाएंगे। आप छोटी सी बात समझिए, आप भी कहीं जाते हैं बोले फला के फला खाने की चीज बड़ी मशहूर है, तो आप चाहे थोड़ी दूर ही क्यों ना जाना चाहे वहां जाते हैं और वहां जाके एक जरूर खाते हैं और बार बार जाते हैं। इसी तरह ये या जाते हैं जब कभी आप किसी राज्य में जा रहे हैं किसी जगह पे जाते हैं तो बोलते हैं कि वहां की एक खास चीज है, जैसे मैंने कहा बनारस की साड़ियां बहुत मशहूर हैं तो आप चाहते हैं कि मैं जरूर वहां खरीदूं और उसका जो है वो मुझे भी लाभ मिले।
1: बिल्कुल, तो कश्मीर तो जा रहे हैं तो शॉल लेना बहुत
0: केसर है, केसर खरीदेंगे वहां का,
1: तो ये दक्षिण में जा रहे हैं तो यहाँ का सिल्क बहुत मशहूर है। बिल्कुल,
0: तो बेचना आसान है और दूसरा ये कि उसका फिर उसको प्रीमियम भी मिलता है क्योंकि खरीदार को भी मालूम है कि मैं जो खरीद रहा हूँ वो एक विशेष चीज है, ये आम चीज नहीं है जो मैं खरीद रहा हूँ, ये मुझे सिर्फ इसी क्षेत्र से, इसी व्यक्ति विशेष से, इसी जो है वो एरिया से मिलती है, तो इसलिए एक उसको भी एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ एक यूनिक प्रोडक्ट को मैं खरीद रहा हूँ।
1: बिल्कुल, तो डॉक्टर बजाज आप कह रहे हैं कि एक प्रीमियम मिलता है कस्टोडियन को, तो ये प्रीमियम कौन देता है और इससे फायदा क्या होता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: खरीदार देता है ना प्रीमियम, वो खरीदार जो है वो जाता है, उसको एक तो उसको पता है कि धान, जब उदाहरण जब आपने दिया बासमती का ही, तो बासमती के जो खरीदार है वो जो रेट देगा और दूसरे जो धान है उसमें फर्क तो रहता ही है
1: जी।
0: तो बासमती का सबसे महंगा चावल बहुत सी वजह है, उनमें से एक वजह तो ये भी है कि वो GI टैग है और दुनिया भर में बासमती को हम ठीक दाम पर बेचते हैं, लोग इसको जो है एक्सपोर्ट में हमें प्राइसेस भी अच्छे मिलते हैं जिसका ऑफकोर्स किसानों को लाभ भी मिलता है, तो इसी वजह से क्योंकि एक GI टैग है। और भी बहुत सी बातें हैं उसकी विशेषता है, लेकिन विशेषता ये भी है क्योंकि ये GI टैग है, एक खास भौगोलिक पहचान है इसकी।
1: बिल्कुल, GI टैगिंग मिल गई है तो विश्व भर में उसकी पहचान हो गई है, विश्व की नहीं अपने देश की बात कर ले तो पहचान हो गई है, जब भी कभी वहां उस क्षेत्र में जाते हैं तो हम उसका स्वाद या फिर उस चीज को लेना जरूर पसंद करते हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हम कोई भी उत्पाद यहां पर तैयार कर रहे हैं तो उसकी GI टैगिंग जरूर करवा लें। फायदे अनेक हैं, हर एक को इससे फायदा मिल सकता है, और किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है GI टैगिंग और इसकी जो प्रक्रिया है उसमें क्या किसी तरह की कोई समस्या भी आती है, इस पर भी हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: किस तरह की इसकी प्रक्रिया रहती है इसके बारे में तो हमने जान लिया, और इससे फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में भी विशेषज्ञों ने हमें विस्तार से बताया है। लेकिन जब हम इस प्रक्रिया में जाते हैं तो कुछ समस्याएं तो जरूर आती होंगी, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगी राजेंद्र कुमार जी से कि जब हम जीआई टैगिंग पर जाते हैं तो कुछ समस्या तो आती होंगी, हमारी एजेंसियों को या संगठनों की बात करें तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जब जीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के सामने जाती है तो एक समस्या होती है कि जब एग्जामिनेशन होता है उसका, उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब उसको एनालाइज करते हैं तो उनका मेन फोकस होता है कि ये स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं ये साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं या नहीं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है या नहीं, क्योंकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी ऐसा होता है जैसे कोई इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट्स लगा दिए और वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के तौर पे जो है पास ऑफ किए गए, वो ऑथेंटिक सोर्स बहुत जरूरी है। और उसके बाद जरूरी होता है कि इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स कि जो बॉडी रजिस्ट्रेशन के लिए जारी है उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं उस प्रोडक्ट को उस रीजन के साथ, और जब तक वो इंस्पेक्शन मैकेनिज्म उसका उसके पीछे नहीं होगा तो कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कश्मीरी कारपेट्स
0: जी।
1: अब कश्मीरी कारपेट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए जो बॉडी जिसने रजिस्टर कराया है कश्मीरी कारपेट एज ए जीआई
0: जी।
1: उन्होंने क्यूआर कोडिंग की है, जब आप कारपेट लेने जाते हैं तो उसमें क्यूआर कोडिंग है और कोई भी स्मार्टफोन से किसी भी डिवाइस से उस क्यूआर कोड से ये मालूम कर सकता है कि ये कहां किस रीजन से है, किस वीवर ने इसको वीव किया है। तो इसलिए जब कभी भी मार्केट में कश्मीरी कारपेट बिकता है तो उसके ऊपर जो क्यूआर कोड लगाता है उससे कस्टमर जो है वो मालूम कर सकता है कि ये जेन्युइन कश्मीरी कारपेट है। तो ये जो सिस्टम है वो रजिस्ट्रार ऑफ जीआई एग्जामिन करता है, और उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि रिप्रेजेंटेटिव नेचर ऑफ द बॉडी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है, कि कभी कभी जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो उस पूरे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट नहीं करती। बहुत एग्जांपल्स आते हैं, हैदराबाद बिरयानी का एग्जांपल बड़ा फेमस है जिसमें वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो जो बॉडी थी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी और उन्होंने जो है वो अपना टाइटल प्रूव नहीं कर पाए तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का होना, इंस्पेक्शन मैकेनिज्म का होना, ट्रेसिबिलिटी का होना, और फिर जो है जो ओवरऑल सुपरविजन है उसके बाद फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। और जैसे मैंने पहले समझाया उसके बाद कोई भी अपोज भी कर सकता है एप्लीकेशन, और ये अपोजिशन कहीं से भी आ सकती है, हिंदुस्तान से ही नहीं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और
0: तो जैसे आपने कहा कि उसके विरोध में भी यहां पर सवाल उठाए जा सकते हैं, ऑपोजिशन हो सकता है, तो ऐसे में फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया रहती है, उसका जस्टिफिकेशन किस तरह से दिया जाता है?
1: उसका जस्टिफिकेशन रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के सामने जो कि क्वेजाई जुडिशियल बॉडी है, जैसे कोर्ट्स होते हैं तो उसमें वो एविडेंस एग्जामिन होता है, जिसे दूसरी बॉडी ये कहती है जो अपोज करती है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटीज ये नहीं है
0: जी,
1: ये होनी चाहिए, या इसका एरिया इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप की ऑपोजिशन आती हैं और उसको भी जो है थ्रू प्रॉपर जुडिशियल माइंड एग्जामिन किया जाता है कि ये सच है या नहीं। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रिप्स एग्रीमेंट डॉक्टर बजाज ने बताया उसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 24.9, वो ये कहता है कि अगर कोई जीआई डोमेस्टिकली प्रोटेक्टेड नहीं है तो किसी कंट्री के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए यहां पर उसकी जो स्क्रूटनी होती है उसका एग्जामिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे बासमती का एग्जांपल दिया, दार्जिलिंग टी का एग्जांपल दिया, ये डोमेस्टिकली रजिस्टर्ड है
0: जी।
1: और इसीलिए जो है बाहर की कंट्रीज बाहर के कोर्ट्स उसको रिकग्नाइज करते हैं कि हमने हिन्दुस्तान में उसको प्रोटेक्ट किया।
0: बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ यहां पर समझाया है राजेंद्र जी ने। हम उम्मीद करते हैं कि अब अगर आप जीआई टैगिंग के लिए जाएंगे तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, अब आप पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन से हम कह सकते हैं दस्तावेजों की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है जिससे आप जीआई टैगिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब हम डॉक्टर शर्मा के पास आना चाहेंगे। डॉक्टर शर्मा, जब हम किसी कृषि उत्पाद की जीआई टैगिंग की बात करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ही फायदा नहीं होता बल्कि फसलों को भी उससे काफी फायदा होता है,

0: फसल संरक्षण की हम बात करें तो उससे भी काफी मजबूती मिलती है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि फसल संरक्षण किस तरह से और बेहतर तरीके से किया जा सकता है अगर हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं तो।
1: देखिए अदिति, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कोई भी उत्पाद का जीआई टैग ले लेते हैं, लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए कि उस जीआई टैग को हम कैसे संभाल कर रखें
0: जी,
1: और कैसे उस उत्पाद के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि यदि हम उस टैग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा टैग लेने का कोई विशेष लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जैसे हमने बासमती का जीआई टैग लिया, हम पूरे विश्व में बासमती चावल जो है लोगों को खिलाते हैं और लोग पसंद करते हैं। उसमें विशेष अरोमा है, उसकी एक अपनी लेंथ है, उसकी एक ब्रेड्थ है, उसमें जो बायोकेमिकल जो बासमती के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुदरती रूप में जैसे जैसे जिन जिन इलाकों में बासमती होता है उनमें वो होगा ही होगा। तो हमें ये भी पक्का सुनिश्चित करना है कि वो सारी जो क्वालिटी, वो जो मानक जिनको हम कहते हैं या स्टैंडर्ड हम कहें, वो स्टैंडर्ड बासमती उत्पाद जो हमारा निकले, हमारे किसानों द्वारा पैदा किया हुआ बासमती, वो सारे के सारे मानक उसमें पूरे हों। यदि वो मानक पूरे नहीं होंगे तो अगर मान लीजिए कल को हमने कोई बासमती के नाम पर हमने चावल भेज दिया यूके में और वहां लोगों ने देखा, या जो हमारे कंज्यूमर हैं वो बड़े समझदार हैं, कंज्यूमर को अगर कल को पता लगेगा नहीं ये तो बासमती जैसा नहीं है, तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब वो कोई भी उत्पाद, वो बासमती हो या कोई अन्य जीआई टैग उत्पाद हो, जब वो उसका उत्पादन करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करें
0: जी।
1: और यदि हम मानक के अनुरूप उत्पादन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका एक अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा भाव मिलता है, उसके एक्सपोर्ट करने में कोई समस्या नहीं आती है और किसानों के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा है, माला माल है।
0: बिल्कुल, तो मानक के अनुरूप यहाँ पर उत्पादन करना बहुत जरूरी है। ऐसे में ही उपभोक्ता जो है ज्यादा से ज्यादा उस हम कह सकते हैं उत्पाद का खरीदेंगे या फिर सेवन भी करेंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आपसे जानना चाहेंगे, जीआई टैगिंग हो गई है लेकिन उन मानकों के अनुरूप उसका उत्पादन नहीं हो रहा है, इस अवस्था में क्या होगा?
2: बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा दीदी, क्योंकि जीआई टैग लेना ही खाली काफी नहीं है। अब उसके बाद जैसे बासमती, तो चलो उदाहरण हम बार बार दे रहे हैं, दार्जिलिंग चाय का भी उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि पहले से ही बहुत वॉल्यूम में उसकी उपलब्धता है
0: जी।
2: ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी हमारे पास है तो सही, जीआई टैग भी ले लिया हमने, लेकिन उतना जो है उसकी वॉल्यूम में उपलब्धता नहीं है और उपलब्धता अब उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम सब एक, जो भी उस क्षेत्र के जो किसान हैं वो अब एकजुट हों, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब इसका जो है एक भौगोलिक पहचान हो गई है उत्पाद की, तो उसके साथ जुड़े किसान या किसान जो उनके साथ हैं जो प्रोसेसिंग में भी जा रहे हैं, क्योंकि खाली फसलों का ही या उन्हीं का ही जीआई टैग नहीं होता, जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उनका भी जीआई टैग होता है। तो उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक क्लस्टर अप्रोच में चलें जिससे कि वो मिलकर एक वॉल्यूम दे सके, क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा थोड़े थोड़ी चीज से उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई ऐसे उत्पाद हैं जो महीने में, साल में एक महीना होते हैं और उसको बेच दिया और 12 महीने उसको खत्म हो गया, उसको कोई लाभ नहीं है। तो सबको मिलकर क्लस्टर अप्रोच लेके चलना है और एक FPO बनाकर, FPCs बनाकर उसको कोशिश करनी है कि हम लोग वॉल्यूम दें, जिससे कि वॉल्यूम होने से क्या फायदा होगा, एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, दूसरा हम वॉल्यूम होने से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा एक्सपोर्ट नहीं होता है, एक्सपोर्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने घरेलू बाजार में भी हम बेच पाएंगे। उससे जब कॉस्ट कम आएगी, ज्यादा हमारा बिक्री होगी, तो उसका लाभ जो है वो नीचे तक जाएगा। बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने वॉल्यूम को बढ़ाएं, कॉस्टिंग को ध्यान रखें और अपनी जो एक विशेष पहचान है उसको बनाए रखें। उसके अलावा जो हमारी जो जीआई टैग को अगर इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहा है उसको भी बचाने की पूरी कोशिश करें। ये एक तरह का ट्रेडमार्क है आपका, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये मेरी चीज है जिसको मैं या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
0: बिल्कुल, तो इस बात का भी जरूर यहां पर ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने बताया कि ऑथेंटिसिटी यहां पर हो जाती है जब हम जीआई टैगिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उपभोक्ताओं के मन में ये सवाल रहता है कि क्या ये सच में कश्मीर का शॉल है, क्या ये सच में लखनऊ का आम है। ऐसे में क्या कह सकते हैं आप हमारे उपभोक्ताओं को कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी यहां पर प्रूव हो?
3: जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कश्मीरी कारपेट्स में क्यूआर कोडिंग
0: जी।
3: एक वन ऑफ दी मींस चूज किया गया है जिससे कंज्यूमर अपने आप ही ऑथेंटिकेट कर सकता है कि ये जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं।
0: जी।
3: ये प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, जैसे दार्जिलिंग टी है या बासमती राइस है या अल्फोंसो मैंगोज है, उसमें ऑथेंटिसिटी का प्रूफ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है जैसे एरोमेटिक राइसेस हैं, एरोमेटिक राइसेस एक जैसे ही लगते हैं। और ये समस्या जो है हमारे सामने आई थी 1998 में, एक यूएस की कंपनी राइस टेक, उसने पेटेंट लिया और उस पेटेंट में ये कहा गया कि बासमती राइस जो है कोई नेचर का गिफ्ट नहीं है, इसको कहीं भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक राइस अपने हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, उसकी क्वालिटी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी ही थी जैसे बासमती राइस की होती है, एरोमेटिक लॉन्ग ग्रेन, और उन्होंने कहा कि ये राइस जो है हम यूएस में ही ग्रो करेंगे। तो उस पेटेंट से हिंदुस्तान काफी रैटल्ड हो गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें एपीडा और सीएसआईआर का बहुत रोल था, उन्होंने वो एप्लीकेशन फाइल की, रेवोकेशन की यूएसपीटीओ के सामने। और ये प्रूव किया कि ये जो प्रोडक्ट है बासमती राइस ये यही प्रोड्यूस हो सकता है, इसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो नेचर ने दी है और उसको जो है कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, और इस एफर्ट की वजह से वो पेटेंट जो है रिवोक हो गया, वहां की अथॉरिटी ने, वहां के कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटेक्शन है उसको इस तरह से डिफाइन करें कि हम एनफोर्स भी कर सकें। टर्मरिक पाउडर का एग्जांपल आता है, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, यूएस कंपनी ने उसको पेटेंट किया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको जो है रिवोक किया। तो उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज की जरूरत पड़ी हमें, हमें ये प्रूव करना पड़ा कि जो टर्मरिक पाउडर है हमारा ये ट्रेडिशनल मेडिसिन का पार्ट है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और उसको कोई भी जो है उस पर पेटेंट नहीं ले सकता।
0: तो बिल्कुल, तो ये सब हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ यहां पर होता है, लेकिन यहां पर जीआई टैगिंग जो करवाते हैं उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि मानकों का ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़े। अब हम निर्यात की यहां पर फिर से एक बार बात कर रहे थे, डॉक्टर बजाज आपके पास आना चाहेंगे। हम एपिडा की बात करते हैं तो कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शीर्ष संस्थान माना जाता है। जीआई टैगिंग होने के बाद निर्यात में किस तरह का बदलाव देखते हैं आप लोग, इस पर क्या कहेंगे हमारे किसान ताकि ज्यादा से ज्यादा इस ओर बढ़ सके, इसके लिए हम जानना चाहेंगे।
2: अब एपिडा पूरा निरंतर प्रयासरत है कि जो भी जो जीआई टैग है, जो भौगोलिक पहचान के उत्पाद हैं, उनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके और निर्यात बढ़ भी रहा है। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, हम लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा कृषि उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात हो रहा है और लगभग हर साल ये निर्यात जो है वृद्धि की ओर ही जा रहा है। पिछले साल तो हमने करीब 29% की वृद्धि दी इसमें।
0: बिल्कुल, तो बहुत ही बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव यहां पर हो रहा है। बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे आप।
2: तो भौगोलिक पहचान के जो उत्पाद हैं उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष अभियान चलाया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जो भौगोलिक पहचान के हमारे उत्पाद हैं, जैसा मैंने कहा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है ये हमारी, तो इसका लाभ जो है वो जो उसके हकदार हैं उन तक मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता हैं उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए कि वो भी इसका उपयोग कर सकें। तो एक विशेष अभियान चलाया हम लोगों ने, हम बायर सेलर मीट कर रहे हैं, क्रेता विक्रेता सम्मेलन कर रहे हैं, हम यहां से जो है उत्पादों को ले जाकर उनका विशेष जो है वो प्रमोशन कर रहे हैं दुनिया भर में, जिससे कि लोगों को बताएं कि ये जो विशेष जो उत्पाद है ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक विशेष क्षेत्र का ही उत्पाद है, हर जगह से नहीं मिल सकता है, तो एक अच्छी एक जो है वो खरीदार को भी अच्छा लगता है उसको खरीदने में, और उसका लाभ भी उसको मिलता है। विशेष अभियान चल रहा है, बहुत प्रमोशन हो रहा है, और बैकवर्ड लिंकेज जैसे मैंने कहा उस तरफ हम काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका वॉल्यूम मिले, उत्पादन हो, और बहुत जरूरी है कि उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बनी रहे, इस तरफ भी ध्यान रखते हैं। और बहुत जरूरी है कि अगर जीआई ले लिया तो उसका प्रोटेक्शन भी रखना है, ये ना हो कि मैं तो जीआई लेके बैठ गया और दूसरा कोई जो है उसी उत्पाद को जो है उसी नाम से बेच रहा है, ये भी नहीं होने देना, इसको भी हम लोग प्रयास रहते हैं।
0: बिल्कुल, तत्तुल्य भारत की अमूल्य नदी है, बिल्कुल इस ओर हमें बिल्कुल ध्यान देना है। निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि डॉक्टर बजाज ने बताया है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, फायदा हो रहा है हमारे देश को, हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है विश्व स्तर पर, तो ऐसे में हम सभी को इस ओर भी खास ध्यान रखते हुए आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे। हम भी फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और यहां पर मैं डॉक्टर शर्मा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो जीआई टैगिंग बहुत सारे उत्पादों की हुई है, लेकिन खास तौर पर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में ज्यादा ऐसे उत्पाद देखने को मिलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
1: देखिए, ये निश्चित रूप से आदित्य आपकी बात सही है, और हमारे उत्तर भारत के जो किसान हैं उनको भी ये जरूरत है कि वो भी जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहाँ छोटे छोटे कई ऐसी उत्पाद हैं जिनको आगे लाके उनको जीआई टैगिंग करा के उनके उत्पादन को बढ़ा के और उनको एक बड़ा बाजार दिया जा सकता है। और उसके लिए ये जरूरी है कि वहाँ जो छोटे समूह हैं, हमारे जो किसान समूह जिनको आजकल पूरे भारत सरकार और पूरी राज्य सरकार भी जिनको पूरा महत्व देते हैं, और उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचने का एक प्रयास है, तो ये किसान समूह एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकते हैं, जो हमारे किसानों को बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाके, और जो हमारी इस तरह की जो छोटी छोटी प्रोडक्ट है उनको, जैसे कि बजाज साहब ने कहा कि इसमें जल्दी से अपना ये प्रयास करें किसान लोग, अगर कोई उत्पाद उनके आसपास के एरिया में, उनके जिले में, उनके तहसील में, या कोई जरूरी नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ 10-12 गांव ही हो जहां पे वो विशेष रूप से वो कोई उत्पाद होता है, वो उत्पाद फल का हो सकता है, वो उत्पाद किसी सब्जी का हो सकता है, वो उत्पाद किसी अन्न का हो सकता है। जैसे अगर आप आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं, एक भालिया गेहूं है, अब वो भावनगर जिले के थोड़े से कुछ एरिया में भालिया गेहूं के नाम से उसका बहुत बड़ा महत्व है, उसकी जो क्वालिटी है वो बड़ी अलग है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ बाद में अगर हमें उसको एक्सपेंड करना है, उसका निर्यात करना है, तो वाकई में हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता को ज्यादा लाना पड़ेगा, लेकिन जीआई करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास हमारे किसान भाई खास तौर पर और जो हमारे किसान समूह है वो ये सुनिश्चित करें अपने आसपास के एरिया में यदि कोई विशेष उत्पाद है तो उसको जीआई के लिए आगे लेकर आए, ताकि कालांतर में आने वाले समय में वो उसका पूरा लाभ उठा सके।
0: बिल्कुल, तो जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि भावनगर का एक भालिया गेहूं है, अगर हमारे किसान उस छोटे से क्षेत्र में ही, उस दायरे में ही ना रहकर विश्व स्तर पर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो जीआई टैगिंग की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे न केवल आपके क्षेत्र को एक पहचान मिलेगी, पूरे विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश को एक अलग पहचान मिलेगी, और साथ ही साथ फायदा पूरे देश को होगा, आपको भी होगा। तो जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब हमारे किसानों को ये समझने की जरूरत है।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
5: आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
0: जीआई टैगिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपके क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलवा सकती है। इसके लिए अब हम सभी को आगे बढ़ना होगा। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं, आइए उनसे और जान लेते हैं। ऐसे में हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं जानना चाहूंगी यहां पर डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जीआई टैगिंग जो है प्रसंस्कृत उत्पादों की भी की जा सकती है। अभी तक किसान अलग अलग उपज की यहां पर जीआई टैगिंग कर रहे थे, लेकिन अगर प्रसंस्कृत उपज यहां पर लेकर आते हैं, उत्पाद लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया कोई अलग है या फिर वही प्रक्रिया रहेगी?
2: वही प्रक्रिया
0: जी,
2: जैसे मिठाइयां हैं, कई हमारी विशेष मिठाइयां हैं, उनका जीआई टैग है। बहुत सी ऐसी मिठाइयां जिनका तो जीआई टैग हुआ ही नहीं है, और बहुत सी जरूरत है, क्योंकि ऐसी विशेष जगह चीजें हैं जिनका हम लोग अब जानते हैं। हम रोजमर्रा में बात करते हैं कि उस जगह की ये चीज बड़ी मशहूर है, वहां जाके हम लोग जरूर खाएंगे, टेस्ट करेंगे। तो ऐसी बहुत सी मिठाइयां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई हैं, उसकी प्रतिष्ठा है, अलग से प्रतिष्ठा है, उनको जो है वो जीआई टैग की आवश्यकता है। और जब जीआई टैग हो जाता है तो सबसे पहली तो एक मेरे को एक सेटिस्फेक्शन होगी कि अब ये उत्पाद मेरे ही क्षेत्र का, हमारे ही क्षेत्र का है, और उसको जो है जो भी आएगा हम कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पाद है, इसी क्षेत्र विशेष से मिलता है। तो जो भी उपभोक्ता आ रहा है वो उस चीज को खरीदने में उसे भी सेटिस्फेक्शन होगी और हमें बेचने में आसानी होगी। और उसके बाद जो है वो हम लोग उसका प्रमोशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं कि ये उत्पाद इस जगह का है, विशेष जीआई उत्पाद है।
0: जब एक अलग पहचान मिल जाएगी तो उसके दाम भी काफी अच्छे मिलेंगे, तो इससे फायदा ही फायदा हमें सामने नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में कई तरह के कुछ बाधाएं भी होती हैं, तो राजेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी हो जाए या फिर ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो ऐसे में क्या किसी तरह का कोई कानूनी प्रावधान भी है?
3: बिल्कुल, हमारी जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के अंदर सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज दोनों हैं
0: जी।
3: उसमें जो जीआई ओनर होता है, जो कस्टोडियन होता है, उसको राइट दिया गया है कि वो कोर्ट में जाके एक इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल करे, और उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। और इन्फ्रिंजमेंट के भी काफी फॉर्म्स होती हैं कि एक प्रोडक्ट जो कि जीआई प्रोडक्ट नहीं है वो मार्केट में पास ऑफ कर रहा है एज ए जीआई प्रोडक्ट। तो वो जैसे बनारसी साड़ी का एग्जांपल है, बनारसी साड़ी जैसे मेड इन चाइना हिंदुस्तान में बिक रही हैं, लेकिन बनारसी वो जो है बनारसी साड़ी के जीआई का इन्फ्रिंजमेंट होगा, और उसमें जो है सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और क्रिमिनल रेमेडी भी जो है अंडर द एक्ट काफी स्ट्रिक्ट है, इसको कॉग्निजिबल ऑफेंस मानी गई है। उसमें जो है पुलिस जो है विदाउट एनी एनेबलिंग पावर फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट वो अरेस्ट भी कर सकती है, इसमें ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। तो हमारा जीआई एक्ट काफी स्ट्रांग है और काफी मॉडर्न है, और उसमें जो प्रोविजंस हैं अगर जीआई ओनर उनको एनफोर्स करे तो हमारे कोर्ट जो हैं काफी फोर्थ राइट है। इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगा, स्कॉच विस्की एसोसिएशन हिंदुस्तान में 1980 से इन्फ्रिंजमेंट एक्शन फाइल कर रही है, और उन्होंने जो है एक तरह से बॉडी ऑफ केस लॉ बनाई है। अगर हम जीआई लॉ के बारे में हिंदुस्तान में देखते हैं तो SWA स्कॉच विस्की एसोसिएशन ने जो कंट्रीब्यूट किया है केस लॉ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो आज तक बहुत यूजफुल रहा है
0: जी। बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर देखिए कानूनी प्रावधान भी हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा धोखाधड़ी भी हो रही है तो आपको यहाँ पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल सहयोग के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। बिल्कुल, जीआई टैगिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फायदेमंद साबित हो सकती है हमारे संगठनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, एक क्षेत्र की एक नई पहचान बनाने के लिए। तो अंतिम सवाल मैं तीनों से ही एक बार लेना चाहूंगी, उनकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, किसानों की आय को दोगुना करने में ये जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगी?
1: देखिए अदिति, ये बहुत ही अच्छे बात आपने उठाई, क्योंकि भारत सरकार विशेष रूप से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना है
0: जी।
1: उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी उत्पाद वो करें वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो
0: जी,
1: और अगर वो जीआई टैग है तो निश्चित रूप से उनकी आय में वृद्धि होगी होगी
0: जी।
1: लेकिन किसी भी जीआई उत्पाद का जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके मन में, उनके दिमाग में उस जीआई उत्पाद के बारे में सही बात बैठना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा जो ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है
0: जी,
1: वो एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करता है। किसी भी उत्पाद का अगर हम हमारे कंज्यूमर तक
0: जी,
1: उसको ट्रेसिबिलिटी से बता पाए कि देखिए ये उत्पाद है, ये यहां से चला, यहां पैदा हुआ
0: जी,
1: और उसके बाद यहां गया और उसका यहां प्रोसेसिंग हुई, यहां पैकिंग हुई और यहां जाके वो कंज्यूमर के तक पहुंचा, अगर हम ये निश्चित

0: उपभोक्ता अगर हम अपने अपने कंज्यूमर को दे पाए तो निश्चित रूप से
1: वो खरीदेगा ही और लाभ सीधा हमारे किसानों को मिलेगा। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपसे भी हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, किसानों की आय को दोगुना करने में जीआई टैगिंग किस तरह से फायदेमंद साबित होगा?
2: मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन है अगर हम इंक्रीज करने पे फोकस करेंगे उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना की जाए, क्योंकि जीआई प्रोडक्ट्स जो है हिंदुस्तान की इमेज है वर्ल्ड में। अगर हम क्वांटिटी के पीछे भागेंगे और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो बदनाम हमारे देश का ही होता है। इसलिए दोनों क्वांटिटी एंड क्वालिटी को साथ साथ चलना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो है जीआई प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन इतनी हाई नहीं होती क्योंकि उनका रीजन लिमिटेड होता है,
1: पर क्वालिटी यहाँ पर बहुत क्वालिटी मायने रखती है। गुणवत्ता अगर अच्छी है आपके उत्पाद की तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर अच्छा दाम मिलेगा ही मिलेगा, और जीआई टैगिंग हो गई है तो ये सोने पर सुहागा साबित हो जाता है। डॉक्टर बजाज, संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए क्या संदेश है आपका?
3: सबसे पहले आपको उदाहरण दे दें, जैसे एक बलिया गेहूं की बात की गई जो घरेलू बाजार में बिकता है, प्रीमियम पे बिकता है, हमने एक्सपोर्ट किया और वो भी प्रीमियम पे किया, क्यों? क्योंकि वो जीआई टैग था, और जब प्रीमियम में बिका तो उसका लाभ जो है नीचे तक भी गया, सबको मिला, जो उसके उत्पादन कर रहे थे उनको भी उसका लाभ मिला। तो एक इसी तरह उदाहरण है, जीआई टैग होने पर उसका बेचना आसान है, हमें प्रीमियम मिलता है और एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं जो एक चीज उगा रहा हूँ ये विशेष है, ये दुनिया के और किसी कोने में ऐसी चीज उगती नहीं है या बनती नहीं है, ये हम ही हैं इसके निर्माता या इसको उगाते हैं, तो एक संतुष्टि भी मिलती है। आने वाली जनरेशन को भी हम कह सकते हैं कि ये चीज हमारी जनरेशन ने हमें दी है और हम आगे आपको जनरेशन को देने जा रहे हैं। प्रीमियम मिलता है, आय में वृद्धि तो अवश्य होती है, इसीलिए इसका हम बड़ा प्रमोशन करने की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो जीआई टैगिंग देखिए कुल मिलाकर काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, आय में वृद्धि, एक विशेष पहचान, और अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं तो और भी ज्यादा हमारे लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए जीआई टैगिंग की ओर आप अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं, हमारी सरकार की ओर से भी यहां पर आपको पूर्ण सहयोग देने के लिए सभी तैयार बैठे हैं।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भी 90.8 FM।
5: आप रेडियो आपड़ी बातें,
4: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पूरी परिचर्चा, कितनी बड़ी परिचर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से, खेतीबाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हमने सुनी है और जाने हैं कि किस तरीके से जीआई टैगिंग की जाती है और किस तरीके की फसलों में जीआई टैगिंग की जाती है, कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें जीआई टैगिंग और किस तरीके से कानून क्या कहता है, सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रस्तुत की है। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और इसका लाभ जरूर लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से हम जीआई टैगिंग से लाभ ले सकते हैं आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो ये सारी बातें हम कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं वो छोटी छोटी बातें हमारे किसान साथियों तक पहुंचे जो उनके लिए बेहद जरूरी है। तो यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी साथ साथ में केबीके में जाकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का, आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
5: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: तुमसे अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
0: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: आज के कलाकार के इस नए प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम हमेशा कहते आए हैं और आपको पता है कि ये मंच है नए गायकों का, गायिकाओं का, नए टैलेंट्स का, तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं बानी जी। बाकी की बातचीत हम बानी जी से करेंगे। बानी जी खुद अपने बारे में बताएंगी। बानी जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए प्लीज हमें बताइए ना, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं।
2: जी नमस्ते समीर जी।
1: जी
2: मेरा नाम बानी कानवर है, मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ। मैं आईओसी में जॉब करती हूँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में।
1: जी। बहुत खूब दोस्तों आपने सुना बानी जी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं और गुवाहाटी में रहते हैं। मैम हमें गुवाहाटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए ना, दिस प्लेस इज नोन फॉर व्हाट, किस चीज के लिए ये जगह फेमस है।
2: फेमस तो बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि आपको रिवर आइलैंड, सबसे जो छोटा रिवर आइलैंड है वर्ल्ड में, वो आपको गुवाहाटी में ही मिलेंगी। जैसे कि वो उमानंदा ब्रह्मपुत्र के बीच में है, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, वो आसाम में ही है। और दूसरा है आपका बिगेस्ट रिवर आइलैंड, वो भी आसाम में ही है, जैसे कि माजुली उनका नाम, वहां का नाम है। तो वो, और एक तो आप जानते हैं वो फेमस टेंपल है कामाख्या
1: की
2: मंदिर।
1: जी।
2: और आपको नॉर्थ ईस्ट में ही मिलेंगे जो सबसे क्लीनेस्ट विलेज है एशिया का।
1: ओ
2: आपने सुना होगा नाम।
1: नहीं,
2: माउलिंग लॉन्ग है उनका नाम, वहाँ का जो विलेज है सबसे क्लीनेस्ट है।
1: अरे वाह,
2: एशिया में।
1: अमेजिंग, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये तो बड़ी खूबसूरत बात बताई आपने। दोस्तों सुना आपने, बानी जी ने बताया आसाम नॉर्थ ईस्ट में ही एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव भी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, कामाख्या टेम्पल के बारे में भी बानी जी ने हमें बताया। तो चलिए शुरू करें इस प्रोग्राम को बानी जी के ही गाए हुए इस बहुत ही प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही शानदार शुरुआत। तो बानी जी, मुझे बताएं कि लोग आपके बारे में सबसे ज्यादा क्या गलत फहमी रखते हैं?
1: गलत फहमी क्या बताएं, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है शुरुआत में जैसे कि मैं बहुत घमंडी हूँ।
0: ओके,
1: एक्चुअली मैं हूँ नहीं। जैसे कि मैं सबसे जल्दी घुल मिल नहीं जाती हूँ
0: जी।
1: जो सबसे क्लोज्ड फ्रेंड है या बहुत करीबी है उनसे ही मैं ज्यादा बातचीत करती हूँ, लेकिन जब लोगों को लगता है दो तीन बार मेरे से बात हो जाती है उसके बाद लगता है कि नहीं, घमंडी नहीं है, सही है।
0: ओके ओके, अमेजिंग। ये हो जाता है मैम, कई बार हो जाता है कि लोग थोड़ा बहुत गलत फहमी ले लेते हैं कि शायद ये उतना बातचीत करने वाले व्यक्ति नहीं है, शख्स नहीं है। तो फिर लेकिन जब वो दो तीन चार पांच मुलाकातें होती हैं उनको लगता है अरे नहीं, हम तो गलत सोच रहे थे इनके बारे में, ये तो बहुत लविंग है, बहुत फन है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है। अब तब ये गलत फहमी दूर होती है। हम 100% श्योर, जितने भी अभी हमारे दोस्त आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर उनके दिमाग में कहीं पर भी कोई गलतफहमी अभी भी होगी तो वो हट जाएगी। बहुत बढ़िया,
1: हट जाए तो अच्छा है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, हट ही जाएगी, आप चिंता ना करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं, बानी जी का ही गाया हुआ।

0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। बानी जी, मुझे अपने बचपन की किसी पसंदीदा क्यूट सी याद के बारे में बताइए, कोई मेमोरी?
1: क्यूट सी मेमोरी है, जैसे कि मैं मुझे क्रिकेट खेलना पसंद था उस टाइम में, जब मैं क्लास, हाँ, तो मैंने वो अंडर 19 भी खेला है, अंडर 16 भी खेला है, तो okay. जब मुझे बेस्ट प्लेयर का ट्रॉफी मिला था, वो सबसे यादगार
0: वाओ
1: लम्हा है।
0: ये तो बड़ी ही कमाल की बात है। दोस्तों, आपने सुना, आज हमारे प्रोग्राम में एक लेडी क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने बहुत एकॉम्प्लिशमेंट हासिल किया क्रिकेट की फील्ड में और बेहतरीन काबिलियत साबित की उधर। अमेजिंग बानी जी, बहुत बढ़िया
1: जी, धन्यवाद।
0: तो चलिए दोस्तों, फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत भी सुनते हैं बानी जी की ही आवाज में।

0: बानी जी, जिंदगी में आज तक की आपकी सबसे बड़ी असफलता क्या रही, फेलियर क्या रही, और उससे आपने क्या सीखा?
1: फेलियर तो मैं कहूं कि मैं तो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना चाहती थी, इन फ्यूचर भी बात मुझे अधूरा छोड़ना पड़ा। मम्मी और पापा को लगता था कि मुझे पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखना या फिर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तब मेरे बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होने वाले थे, तो वो मुझे अधूरा छोड़ना पड़ा। तो बाद में अभी ऐसा लगता है कि नहीं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं हमें पूरी कर लेनी चाहिए, बाद में पछतावा होता है उससे।
0: आपने सही कहा। जी,
1: तो मैं चाहूंगी कि सभी जब जो सुनने वाले हैं, मैं उनसे कहूंगी कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं आप पूरा कर लीजिए।
0: बिल्कुल ठीक है, काल करे सो आज कर। तो आज में जीने के लिए तो बहुत बहुत सारे लोग बोलते ही रहते हैं, काम को अभी निपटाइए, और अगर कोई इच्छा है तो ठीक है, उसको मन में मत रखिए, उसको पोस्टपोन मत करिए, कर लीजिए उसे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, चलिए फिर एक और गीत सुनते हैं बानी जी की आवाज में।

0: बहुत बहुत प्यारी गायकी मानी जी, थैंक यू सो मच। आज तक की जिंदगी में आपको सबसे अच्छी प्रशंसा, एप्रिसिएशन, तारीफ क्या मिली है और किसने दी
1: जी? ये थोड़ा सा आंसर मेरा लंबा होगा।
0: मोस्ट वेलकम।
1: एक्चुअली मैं, हाँ, तो एक्चुअली मैं तब स्कूल में पढ़ती थी, 9th स्टैंडर्ड में। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल और आंटी रहते थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो मुझे अपने बेटी की जैसे प्यार करती थे। तो वो लोग एक्चुअली दूसरे स्टेट से थे, तो उनको हमारा लैंग्वेज, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, उनको पता नहीं था और वो समझते भी नहीं थे। तो मैं उनका ट्रांसलेटर होती थी।
0: जी जी जी।
1: हाँ, तो एक बार क्या हुआ, अंकल का एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, बहुत सीरियस थे वो।
0: ओह माय गॉड।
1: हाँ, तो मैं आंटी के साथ हॉस्पिटल लेके गई थी अंकल को। तो अंकल को जब हमने हॉस्पिटल तक पहुंचे, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप बेकार में इनका ट्रीटमेंट मत कराइए, पैसे खर्च मत कीजिए, मतलब वो अब इनका लास्ट स्टेज है।
0: ओह माय गॉड। अब
1: हाँ, तो उसके बाद उस बात पे मेरी डॉक्टर के साथ बहस भी हो गई थी। हाँ, तो आंटी ने बोला कि अब तुम जो अच्छा सोचो, जो अच्छा लगे वही करो, क्योंकि अब मेरे पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। तो मैंने किया क्या, कंटिन्यूअसली 4 दिन मैं आईसीयू के बाहर बैठी थी अंकल के साथ। आंटी को सपोर्ट देने के लिए, और साथ में कि क्या वहां के जो जैसे कि जगह का उनका उतना मालूम नहीं था, तो मुझे ही उनके साथ रहना पड़ा जब तक उनका रिलेटिव्स पहुंचे नहीं थे उनके घर में।
0: ओके।
1: तो मैं 4 दिन लगातार उनके साथ थी। फिर उसके बाद जब डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, फिर उसके उनके मेमोरी लॉस हो गया था। उसके बाद 2-3 महीने के बाद जब वो ठीक होके आए, तो आंटी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा कर्जा कभी नहीं उतार पाऊंगी, तुमने जो मेरे लिए किया।
0: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।
1: वही मेरा सबसे
0: सबसे अच्छा एप्रिसिएशन रहा।
1: अच्छा, हाँ जी,
0: बहुत।
1: तो वो हमेशा, आज भी आंटी मुझे वहां से कॉल करती है, चेन्नई से। अभी तक हम लोग जुड़े हुए हैं अंकल और आंटी से। ये सबसे अच्छा मुझे एप्रिसिएशन मिला, और मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया।
0: बहुत सुंदर, बहुत क्यूट, वेरी सेंसिटिव स्टोरी एंड वेरी पावरफुल स्टोरी, मैं कहूंगा बहुत ताकतवर। आपकी पर्सनल ताकत की वजह से उस फैमिली को संबल मिला, ताकत मिली। अंकल आज भी हैं और वो आपको याद करते हैं, या आंटी आपको याद करती हैं, ये बहुत बहुत ही प्यारी सी बात है। बहुत सेंसिटिव, अमेजिंग। तो चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं और एक गीत सुनते हैं जो बानी जी के इन अंकल और आंटी को समर्पित करते हैं।

0: आगे बढ़ते हैं मानी जी, आपके करियर में सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में क्या है और आप उसका सामना कैसे कर रहे हैं?
1: भगवान भोलेनाथ की कृपा से, तो उनके आशीर्वाद से अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब स्मूथली चल रहा है मेरा करियर। मैं आशा करती हूँ कि भगवान मुझे आशीर्वाद करे कि आगे भी कुछ ना हो, ऐसे ही स्मूथली चलता रहे।
0: जी
1: मैं बहुत खुश हूँ अपने जॉब से।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, बाबा के आशीर्वाद से ये सब बिल्कुल स्मूथली चलता ही रहे। वैसे प्रैक्टिकल इश्यूज आते ही रहते हैं और उनको हम लोग रिजॉल्व कर भी लेते हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं होती उससे। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशान होकर कुछ हो नहीं जाता, बिना परेशानी के ही काफी कुछ चलता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बानी जी की ही आवाज में सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बहुत बढ़िया बानी जी, ये सवाल मुझे बहुत पसंद है। बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब भी आते हैं इसके सभी लोगों से। मुझे अपने जीवन के थ्री सबसे प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो, आपको इन्फ्लुएंस किया हो।
1: पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का नाम लूंगी।
0: जी
1: जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे हर क्षेत्र में। तो एक नंबर पे तो मेरे मम्मी पापा हैं।
0: ऑलराइट।
1: दूसरे पर मेरे स्कूल के टीचर्स थे जिन्होंने मुझे सिखाया पढ़ाया जिससे मैं आगे बढ़ पाई और आज मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं अच्छे मुझे जॉब मिले और वो मुझे मिली भी, इसलिए मैं अपने टीचर को दूंगी दूसरी स्थान। और तीसरे पर मेरे म्यूजिक टीचर जो मेरे स्कूल में मुझे म्यूजिक सिखाते थे। एक्चुअली मैं गाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं थी पहले, मुझे खेल में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे जो म्यूजिक टीचर थी तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको गाना गाना चाहिए, आपकी आवाज अच्छी है। तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, तो कोई भी स्कूल में फंक्शन होता था वो पहले मुझे स्टेज पे खड़ा कर देती थी, नहीं तुमको ये गाना है या फिर मैं म्यूजिक के सब्जेक्ट में आपको फेल करवा दूंगी। यही बोल बोल के मुझे उन्होंने गाने में इंटरेस्ट बढ़ाया और प्रोत्साहित किया कि आप गा सकते हो, आप गाओ। तभी से मुझे गाने का इंटरेस्ट ज्यादा आया। तो मैं तीसरे नंबर पे टीचर का, मेरा म्यूजिक टीचर का नाम लूंगी।
0: जी, बहुत खूब दोस्तों, आपने सुना बहुत क्लियरली बानी जी को। वो तीन लोग अच्छी तरह से याद हैं जिन्होंने उनकी जिंदगी को संवारा है, उनको प्रभावित किया है, उनको आगे बढ़ने के लिए चुनौतियां दी हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं इन्हीं तीनों लोगों को समर्पित करते हुए, डेडिकेट करते हुए। और दोस्तों इस गीत में जो मेल सिंगर की आवाज है वो भी बानी जी की ही आवाज है। अमेजिंग।

0: वाओ क्या सिंगिंग है, बहुत बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। बानी जी मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी एक चीज के लिए, एक बात के लिए याद किया जाए तो वो क्या होगी?
1: यदि मुझे किसी एक बात के लिए याद किया जाए तो वो होगी, बहुत निडर थी, बहुत हिम्मत वाली थी। तो मैं चाहूंगी कि मुझे इसी नाम से ही संबोधित करके याद किया जाए हमेशा।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों तो आप सुन रहे हैं आज वीर बानी जी की गाने, बड़े ही प्यारे प्यारे, और उनकी बातें भी हम सुन रहे हैं, क्या बात है। तो चलिए हो जाए फिर एक और प्यारा सा गीत बहादुर बानी के लिए, बहादुर बानी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा गीत, क्या बात है, दिस इज वेरी नाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वाणी जी, मुझे थोड़ा सा और अपने बारे में बताइए, आपकी हॉबीज क्या हैं वाणी जी?
1: मेरी हॉबीज तो है, एक गाना गाना भी है और क्रिकेट अभी भी मैं खेलती हूँ, अगर कहीं मौका मिलता है तो बच्चों के साथ खेल लेती हूँ, और खाना बनाना का भी शौक है मुझे।
0: वेरी नाइस।
1: हाँ, और शॉपिंग का तो है ही।
0: ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे तो ये पूछना तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी शॉपिंग में क्या कुछ खास परचेज करना पसंद करते हैं आप, या एनीथिंग एंड एवरीथिंग?
1: हाँ, तो मुझे पर्स और सैंडल्स परचेज करने में बहुत मजा आता है।
0: ओके,
1: एक्चुअली मुझे ड्रेस के साथ मैच करना होता है, तो मुझे बहुत सारे सैंडल्स और पर्स खरीदने का शौक बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि ड्रेस के साथ कोऑर्डिनेट होना चाहिए, सैंडल्स हो या फिर बैग्स हो, तो ज्यादातर मैं सैंडल और बैग ही शॉपिंग करती हूँ।
0: That is actually very interesting. ये तो बड़ी interesting बात है, बिल्कुल clear आपको कि भाई ठीक है, bag लेने हैं और sandals लेने हैं, बहुत बढ़िया, something different, बिल्कुल अलग, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गीत। बानी जी, अब हमारे प्रोग्राम के हम उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ मैसेज दीजिए, कुछ कहिए उनसे।
1: जी, मैं सभी सुनने वालों को धन्यवाद बोलूंगी जिन्होंने मेरी गाने को उन्होंने सुना। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैसेजेस बानी जी के, हम सबको लिए, नए गायकों के लिए, सुनने वालों के लिए, सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बानी जी, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू
1: जी, थैंक यू।
2: अब हमको खबर थी ऐ दिल, रंगीन शहर भी होगी।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं, शुभ रात्रि।
3: कभी हमने नहीं सोचा था।

कभी हम

0: अच्छा कौन है।
1: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन राज आपका स्वागत करते हैं।
2: हरगिज न यकीन था हमको अनहोनी बात होगी।
1: दोस्तों, आज के कलाकार के मंच पर आज फिर एक नए टैलेंट के साथ हम मौजूद हैं। आपको पता है ये मंच है नए टैलेंट्स का, नए गायकों का, नए प्रतिभाओं का। हमारे साथ हैं आज पीयूष श्रीवास्तव जी। बाकी की बातचीत हम पीयूष जी से करेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं। वो अपने बारे में बताएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको उनको जान के बहुत अच्छा लगेगा। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
3: जी समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मुझे इस मंच पर एक चांस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी।
1: तो पीयूष जी, हमारे जानने वालों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए हमें बताइए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
3: जी मैं बैंगलोर में हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में मैनेजर का काम करता हूँ और यहीं बैंगलोर में काफी सालों से सेटल हूँ, अपने परिवार के साथ रहता हूँ। जी तो लाइक जन्म तो मेरा कानपुर यूपी में हुआ था, परवरिश हैदराबाद में हुई, फिर जॉब इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद फिर जॉब बैंगलोर में लगी, तो तब से यहीं पे हूँ। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत अच्छा मौसम रहता है यहाँ पे, और बस यही जिंदगी कट रही है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है पीयूष जी। ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपका जन्म कानपुर में हुआ, क्योंकि मैं भी कानपुर का ही निवासी हूं। मेरा जन्म भी कानपुर में हुआ।
3: अरे वाह, बहुत अच्छे समीर जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। जी मैं अभी भी जाता रहता हूँ कानपुर, मेरे अभी रिलेटिव्स वगैरह हैं कानपुर में
1: जी,
3: तो अभी भी जाना ना बीच बीच में होता रहता है मेरा, बहुत अच्छा लगता है वहां जब जाता हूँ तो।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही रंगीन, बड़े ही प्यारे प्रोग्राम को पीयूष जी की आवाज में गाए हुए इस नगमे से।

0: बहुत ही प्यारी गायकी, बहुत ही प्यारा संगीत। पीयूष जी, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जैसे आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर्स में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं, अगर कोई बच्चा उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहे तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
1: हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, खासकर कि आज की तारीख में ये बहुत ही

0: रेलेवेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो उतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारी इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं आजकल। लेकिन आई थिंक आजकल आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत तरक्की कर रही है इस फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में। आजकल तो काफी लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है तब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोडिंग, इसके जॉब्स जो है वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि काफी सारे ले ऑफ्स वगैरह होंगे, या इनफैक्ट हो भी रहे हैं। बट मेरा ऐसे नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, इंजीनियर जो होता है वो काफी अलग सोच रखता है। और एक सच्चा इंजीनियर कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी नई चीज आए, उसको जो है वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से सीख लेता है और उस नई टेक्नोलॉजी में फिर महारत भी हासिल करता है। तो यदि आप काफी मेहनत करेंगे, यदि आपको हमेशा जिज्ञासा रहेगी नई चीजों के बारे में पढ़ने की, उसके बारे में सीखने की, तो आप हमेशा इस फील्ड में अव्वल आते रहेंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने दिमाग को व्यस्त रखिए और हमेशा जो है मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी भी बहुत ही अच्छी फील्ड है और इसमें दिमाग का काम हमेशा रहता है, तो अपने दिमाग को चुस्त रखिए, बस इतना ही कहूंगा।
1: बहुत बढ़िया पीयूष भाई, बहुत बढ़िया। आज के बच्चों के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट और बिल्कुल काम की बात बताई आपने। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। पीयूष भाई, लोग आपके बारे में कुछ गलतफहमी रखते हैं क्या कभी, कोई ऐसी कि जो ज्यादातर गलतफहमी होती हो और बाद में क्लियर होती हो?
1: अच्छा, ये तो आपने काफी दिलचस्प सवाल पूछ लिया समीर जी।
0: जी
1: मुझे लगता है कि एक्चुअली कई लोग, मेरे रिश्तेदार भी और ऑफिस में भी कई लोग मुझे सीरियस टाइप का इंसान समझते हैं। और ये सच बात है कुछ हद तक कि मैं दूसरे लोगों के अनुपात में कुछ कम बोलता हूँ,
0: जी
1: पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मेरे जो क्लोज लोग हैं, जो जब मैं अपने कंफर्ट जोन में होता हूँ अपने मित्रों के साथ, तब मैं बहुत शरारतें और बहुत हंसी मजाक करता हूँ सबके साथ।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: ऐसा
0: है,
1: कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। आई थिंक ये गलत फहमी है कुछ लोगों को, काश मैं इसे दूर कर पाता।
0: बस आज दूर हो गई साहब, आज दूर हो गई। जो भी आपके
1: जी
0: प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको ये गलतफहमी अगर रही होगी तो वो दूर हो गई। बहुत बढ़िया, तो चलिए दोस्तों ज्यादा नहीं रुकते, एक और खूबसूरत सा गीत सुनते हैं पीयूष जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत। पीयूष जी मुझे ये बताइए, अपने बचपन की कोई प्यारी सी पसंदीदा याद बताइए मुझे, कोई मेमोरी।
1: बचपन की याद, देखिए बचपन के बारे में मैं जब भी सोचता हूँ तो मुझे नानी का घर याद आता है।
0: वाओ,
1: तो हम लोग कानपुर में, मेरी नानी और मामा वगैरह सब लोग वहां थे। तो और पुराने जमाने में आई थिंक परिवार भी बहुत बड़े होते थे, तो हम लोग बहुत सारे कजन्स थे। और आई थिंक पुराने जमाने में खैर ना सिर्फ कजन्स और रिश्तेदार बल्कि पड़ोसी, इनका भी मायने बहुत होता। तो हम सबको, किसी को भाई, किसी को मौसी, किसी को मामा, ऐसे बोलते थे। पूरा मोहल्ला मतलब हमारे जैसे रिश्तेदारों जैसा था। तो हम अपनी गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे और सारे कजन्स आते थे और पड़ोसी और उनके रिश्तेदार सब आते थे। तो बहुत एक मोहल्ला सा, जमघट सा हो जाता था। और हम काफी सारे अटकेलियां करते थे, काफी शरारते करते थे, खूब मौज होती थी। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी आई थिंक मेरी मेमोरी है। मैं बचपन के बारे में सोचता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि काश ऐसे माहौल में फिर जा पाते और फिर खेलकूद कर सकते, लड़ाई कर सकते और गिरते संभलते। तो आई थिंक सबसे अच्छी मेमोरी मेरी यही है।
0: बहुत बहुत प्यारी सी मेमोरी, बहुत प्यारी मेमोरी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और प्यारा सा गीत।

0: नहीं मिली थी, तो इसकी वजह से आईटी में कभी एडमिशन नहीं ले पाया मैं। और ये आई थिंक सबसे बड़ी असफलता रही मेरी मेरे जीवन की। और आई थिंक उस समय काफी दुख इसलिए भी हुआ था क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई बैकअप ऑप्शन या ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी। तो मुझे उस समय तो ऐसा लगा था कि जैसे जीवन की नैया डूब गई। पहले उस जमाने में आई थिंक इतने ऑप्शंस भी नहीं होते थे जितने आज होते हैं कि भाई एक कॉलेज में नहीं तो दूसरे में चले जाओ एंड सो ऑन। बहुत कम ऑप्शंस होते थे। तो खैर ये सफलता रही और हालांकि इस बात का दुख है लेकिन सीखा बहुत कुछ इस असफलता से। सबसे पहले तो मेहनत करना सीखा मैंने। ये भी सीखा कि आप मेहनत एक चीज के लिए करते हो और वो चीज अगर आप नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत असफल हो गई, क्योंकि वही मेहनत फिर और किसी चीज में काम आती है। और मेरे बहुत काम आई क्योंकि फिर मैंने एक तरह से मेहनत करना सीख लिया। और फिर उसके बाद ये भी हुआ कि अपॉर्चुनिटीज दूसरी आई और फिर अच्छी जगह इंजीनियरिंग कर भी ली और नौकरी भी लग गई और ओवरऑल करियर ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा काफी। तो मैंने तो यही सीखा कि देखिए जब ईश्वर एक द्वार बंद कर देता है तो दूसरे कई खोल देता है। तो इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा होती है लेकिन कम से कम हताश नहीं होना चाहिए और अपनी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत ही प्यारी बात, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली बात आपने बिल्कुल अपने दिल से बताई। तो दोस्तों,
0: जी सर,
1: एक खूबसूरत सा गीत भी हो जाए पीयूष जी की आवाज में ही।